0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: कांटा लगा, ओ माय गॉड, रेडियो मस्ती 24/7 पर कोई कांटे नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खबरें हैं और ओ माय गॉड, हमारे प्यार से आपका बहुत बहुत स्वागत भी है। सीरियस हेडलाइंस With a not so serious vibe, only on the morning show on radio. मॉर्निंग शो पर अगली खबर, जी हाँ, थोड़ी सी कुछ बिजनेस की एरिया से आपको दे देते हैं कि सिंगापुर एयरलाइंस इट्स राइट नाउ इन टॉक्स विद एयरबस एंड बोइंग टू बाय एटलीस्ट 50 ऑफ द इंडस्ट्रीज बिगेस्ट जेट्स, क्योंकि प्लान कर रहा है सिंगापुर एयरलाइंस नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ फ्रॉम नेक्स्ट डेकेड। सिंगापुर एयरलाइंस जो है सीक कर रहा है ऑफर्स फॉर मोर 400 सीट बोइंग 777X, जी हाँ, द इंडस्ट्रीज लार्जेस्ट करंट मॉडल, और फॉर द स्लाइटली स्मॉलर एयरबस 350-1000, दे सेड टॉक्स आर एट एन अर्ली स्टेज बट डेफिनेटली इसमें इंक्लूड हो सकते हैं ऑप्शंस फॉर डजन्स मोर जेट्स, कैन यू बिलीव इट। Well, Singapore Airlines ने हाल ही में ये बताया that it regularly reviews fleet renewal plans and declined to comment on any confidential discussions that we may or may not be having. Airbus and Boeing also declined to comment. Singapore Airlines, one of the largest buyers of long-haul jets, have with a reputation for meticulous and closely held aircraft negotiations that can influence fleet decisions worldwide. साथ ही साथ में सिंगापुर एयरलाइंस ने मई में ये भी कहा था कि वो कंटिन्यू करेंगे टू एक्सपैंड कैपेसिटी इवन एस मोर राइवल्स कट फ्लाइट्स ड्यू टू हायर ऑयल प्राइसेस। सिंगापुर एयरलाइंस की लॉन्ग स्टैंडिंग ऑपरेटर ऑफ द बोइंग 777 मिनी जंबो एंड वाज एन अर्ली कस्टमर फॉर द 777X सक्सेसर व्हिच हैज रन इनटू सिग्निफिकेंट डिलेज। अब देखना ये है कि वाकई कितने ज्यादा नया नया एडिशंस हो रही है हमारे सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लीट में। आफ्टर ऑल हम तो हमेशा प्रेफर यही करते हैं ना कि कहीं भी जाएं तो SQ से जाएं। Alright, coming up next is this gana called LOL. जी हाँ, बहुत ही क्यूट सा गाना सुनेंगे साथ साथ, and I'll be back with some more खबरें across these two ganas. Stay tuned. This is Renuka with you on the morning show.
1: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

0: 3, 2, 1.
1: और ग्रेस सिर्फ स्पीड की नहीं, दिमाग की भी है।
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
4: हाँ जी जी,
3: आधा kg मसूर दाल,
4: जी जी,
3: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
4: जी जी,
3: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
4: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
3: क्या
4: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
3: वाजी, क्या बात जी।
4: Order today from GG Mart, your personal grocer.

0: टाइम फॉर द बॉलीवुड अपडेट ऑफ दिस आवर गाइज. वेल, पिछले घंटे में मैंने आपको एक फिल्म का अपडेट दिया था जो कि आजकल इज रनिंग इन द थिएटर्स, और इस घंटे मैं आपको एक और फिल्म का अपडेट दे रही हूँ विच सरप्राइजिंगली हैज बीन डूइंग मच मच बेटर देन वेल एक्सपेक्टेड और एनी अदर फिल्म दैट इज रिलीज नाउ डेज. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. बात हो रही है बंदर फिल्म की.
1: मंडे कॉफी का बेस्ट पार्टनर द मॉर्निंग शो ऑन रेडियो मस्ती 24/7. न्यूज, व्यूज एंड अ पिंच मस्ती.
0: आई रियली डू वांट टू सी द एस्ट्रोलॉजर जहां बॉबी ड्योल गए हैं. सीरियसली, उस बंदे ने किस्मत बदली है या किस्मत वाकई खुद बदल गई थी ये मुझे समझ में नहीं आया, बट डेफिनेटली आई एम एंजॉयिंग सीइंग हाउ दिस गाय इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन. At a time when Bollywood is increasingly relying on sequels, franchises and established formulas, Bobby Deol ka Bandar jo hai, it has quietly emerged as one of the most clear winners amongst the recent releases. Ji haan, 5 June ko ye movie emerge hui as one of the most talked about films of the year. Bhai, strong reviews aa rahe hain, bahut hi kamal ke reviews aa rahe hain in a very long time for a feature film for its fearless storytelling, telling gripping narrative in just a few hours. Matlab, abhi kuch ghante hi hue the इस फिल्म को रिलीज हुए दैट बंदर फाउंड इटसेल्फ इन द सेंटर ऑफ वाइडस्प्रेड अप्रिसिएशन. बहुत सारे क्रिटिक्स, बहुत सारे लोग जिन्होंने देखी ये फिल्म, उन्होंने 4-star रेटिंग या उससे भी ऊपर उस फिल्म को दिए हैं फॉर प्रेजिंग उनकी बोल्ड स्टोरी टेलिंग. वेल, रिव्यूज हैव पर्टिकुलरली हाइलाइटेड बॉबी देओल की कंपेलिंग परफॉर्मेंस, अनुराग कश्यप का ग्रिटी डायरेक्शन एंड द फिल्म्स विलिंगनेस टू टैकल अ डिफिकल्ट एंड थॉट प्रोवोकिंग सब्जेक्ट. बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस इस फिल्म का, और भी ज्यादा परसेप्शन जो स्ट्रॉन्ग करता है दैट बंदर कुड बी वन ऑफ द इयर्स बिगेस्ट सरप्राइज सक्सेसेस. और ऑडियंसेस और क्रिटिक्स सारे ही इसकी फियरलेस विजन के पीछे. नो बैड, आई टोटली फील कि मैं भी देखना चाहूंगी. इनफैक्ट जब भी बॉबी देओल की कोई फिल्म आती है, फॉर सम रीजन नाउ आई रियली वांट टू वॉच इट एज वेल. द गाय हैज रियली कम अ लॉन्ग वे, राइट, इजंट इट? वेल, लेट्स सी ये फिल्म हमें कब देखने को मिलती है, बट फिलहाल के लिए इस फिल्म का एक गाना डेफिनेटली आपको सुनने को मिल सकता है. Alright, मजा तो अब आएगा जब हम पूरा गाना सुनेंगे साथ साथ, followed by another beautiful track. Stay tuned, guys. This is Renuka with you, and it's about 8:22 by the studio clock. Good morning.
2: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Lion Challenge. City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 91518963.

0: तू सिमरन तू आ गई, मैनू तो लग गया तू आना ही नहीं। नाउ चक दे फट्टे एंड बर्न द डांस फ्लोर।
1: डोंट वरी, आज डांस भी होगा और चांस भी।

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: राइट और इस समय खबर है फॉर द स्पोर्ट्स लवर्स, स्पेशली द फुटबॉल फैंस. जी हाँ, आपके लिए सिंगापुर में फ्री फ्री फ्री, क्या बात है, सिंगापुर में तो कभी कुछ फ्री नहीं मिलता. देखिए, आप ही के लिए है ये खबर. सुबह का असली वेक अप कॉल, द मॉर्निंग शो विद रेडियो मस्ती 24. जी, मॉर्निंग शो पर खबर कुछ ऐसी है कि फुटबॉल फैंस विल बी एबल टू कैच द फीफा वर्ल्ड कप 2026 लाइव एट ओवर 50 कम्युनिटी क्लब्स, 5 एक्टिव एसजी स्पोर्ट्स सेंटर्स एंड द कलांग. जी हाँ, 12 जून से जुलाई 20 तक. क्या बात है, ऑन द मॉर्निंग शो गिविंग यू सम ग्रेट न्यूज. जी हाँ, पीपल्स एसोसिएशन स्पोर्ट्स सिंगापुर एंड द कलांग ग्रुप, तीनों ने अनाउंस किया इसी वीकेंड पर अ लिस्ट ऑफ कम्युनिटी स्क्रीनिंग्स ऑफ सिलेक्टेड वर्ल्ड कप मैचेस अंडर मीडिया कॉर्प्स कवरेज ऑफ द टूर्नामेंट अक्रॉस द वेन्यूज, सो दैट फैमिलीज, फ्रेंड्स, नेबर्स सब इकट्ठा बैठकर चीयर करके बॉन्ड करके सेलिब्रेट कर सकते हैं द ब्यूटिफुल गेम एज अ कम्युनिटी. पीए इज गोना किक ऑफ द कम्युनिटी स्क्रीनिंग्स विद द ओपनिंग मैच बिटवीन मेक्सिको एंड साउथ अफ्रीका. ये होने वाला है 12 जून को 3 बजे सुबह के सिंगापुर टाइम. वाइल स्पोर्ट्स एसजी विल स्टार्ट इट्स स्क्रीनिंग्स विद द साउथ कोरिया चेक रिपब्लिक मैच ऑन जून 12th एट 10 AM. कालांग दिखाएगा द फाइनल 4 मैचेस. जी हाँ, जो शुरुआत होगी जिनकी फर्स्ट सेमीफाइनल के साथ में ऑन जुलाई 15th 3 AM एट द कालांग वेव मॉल. फैंस कैन ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू प्री मैच एक्टिविटीज, इंटरक्टिव football themed games, lucky draws and festive decorations at these venues. Ab June 3rd, ji ha, jab बीत गया हमारा जून 3, वहां पर मीडिया को अपने अनवेल किया अपना फ्री टू एयर लाइनअप ऑफ 28 गेम्स फॉर द वर्ल्ड कप एंड दीज इंक्लूड 2 गेम्स ईच फ्रॉम ऑल 12 ग्रुप्स, मीनिंग ऑल 48 टीम्स आर कवर्ड एज वेल एज बोथ सेमीफाइनल्स एंड द थर्ड प्लेस प्लेऑफ एंड द फाइनल. क्या बात है भाई, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट अगर है और फुटबॉल में स्पेशली है तो आपके तो मजे ही हो गए, कुछ सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है. ऐसे ही ऐसे सबके साथ बाहर, जी हाँ, मस्ती करो. और बढ़िया सा गाना सुन के हमारे साथ भी मस्ती करो, बिकॉज फायर राइट आफ्टर दिस वन इज
3: गश्ती खुली सड़क में पकड़ी.
2: बताइए और कहां आपका मूड बनाने के लिए सुबह सुबह कोई मिलेगा रेडियो मस्ती 24/7 के अलावा. स्टे ट्यून्ड.

आज तो गुड न्यूज ही गुड न्यूज है हमारे सिंगापुर के लिए. ऑफकोर्स सुबह हमने बात करी कि किस तरह से रिटेल सेक्टर जो है उसमें इंक्रीज ऑफ सेल्स दिखाई दिया है इन द मंथ ऑफ अप्रैल. साथ ही साथ में मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि जो वर्ल्ड कप है, जी हाँ, फुटबॉल की बात हो रही है, वो मैचेस आपको फ्री देखने को मिलेंगे बहुत सारे, वो भी पब्लिक सेंटर्स पे, ताकि आप एंजॉय कर सके विद फैमिली एंड फ्रेंड्स. और अब मैं आपको एक खबर देने वाली हूँ कि जो आने वाला इंक्रीज है, जी हाँ, वेज इंक्रीज फॉर पब्लिक बस ड्राइवर्स, उसकी वजह से आप पर कोई कॉस्ट का बर्डन नहीं पड़ेगा. Isn't that amazing, guys? For Singapore, the ugly खबर coming up on Radio Mercy 24/7 Morning Show. Serious headlines with a not so serious vibe. Only on the Morning Show on Radio Mercy 24/7. कम्यूटर्स, जी हाँ, आप और हम जैसे लोग जो कि बसों में जा रहे हैं, वी विल नॉट बी एबल टू बेयर द कॉस्ट ऑफ द वेज इंक्रीजेस फॉर पब्लिक बस ड्राइवर्स, जो कि जनवरी 2027 से इट्स गोना टेक इफेक्ट, क्योंकि ड्राइवर के सैलरीज आर नॉट अ फैक्टर इन कैलकुलेटिंग चेंजेस टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट फीस. LTA ने हाल ही में ये कहा इन रिस्पॉन्स टू क्वेरीज दैट एनी इंक्रीजेस टू फेयर्स आर डिसाइडेड बाय द पब्लिक ट्रांसपोर्ट काउंसिल व्हिच यूजेस अ फेयर एडजस्टमेंट फॉर्मूला जो अकाउंट करता है वेरियस फैक्टर्स. जी हाँ, ये जो फॉर्मूला होता है इसमें वेज कॉस्ट होते हैं. दिस मेट्रिक रिफ्लेक्ट्स नेशनल एवरेज वेज चेंजेस अक्रॉस द ब्रॉडर इकोनॉमी रादर देन द स्पेसिफिक सैलरीज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट वर्कर्स. अदर कॉम्पोनेंट्स इंक्लूड द कोर इन्फ्लेशन रेट. ये जो सेट ऑफ सैलरी एडजस्टमेंट है बस कैप्टन्स के लिए, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द फेयर एडजस्टमेंट फॉर्मूला, कहा LTA ने बहुत ही क्लियरली. जी हाँ, पिछले ही हफ्ते अथॉरिटी ने अनाउंस किया था दैट द गवर्नमेंट विल फंड अ $450 मंथली सैलरी इंक्रीज फॉर न्यू सिंगापुरियन एंड PR बस ड्राइवर्स अलॉन्ग विद एन एडिशनल $2,000 साइन ऑन बोनस. ये जो मूव है इट इज एम्ड एट अट्रैक्टिंग मोर लोकल्स टू द प्रोफेशन एज द वर्कफोर्स एजेस एंड ऑपरेटर्स फेस चैलेंजेस इन हायरिंग एंड रिटेनिंग बस ड्राइवर्स. और इसकी वजह से एवरेज मंथली पे ऑफ अ न्यू बस ड्राइवर फ्रॉम 3,600 जो इस समय का पे आउट है बढ़ जाएगा $4,000 तक पर मंथ आफ्टर इंक्लूडिंग ओवर टाइम पे एंड अलाउंसेस. अभी जो बस ड्राइवर्स हैं दे विल ऑल्सो गेट अ वन टाइम पे इंक्रीज रेंजिंग फ्रॉम $150 to $250 विच विल बी फंडेड बाय देयर रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स अमंग द फोर पब्लिक बस ऑपरेटर्स. तो भाई, कहने की बात यह है कि आप अपनी जेब से पैसा नहीं दे रहे हैं बस ड्राइवर्स की सैलरी का बढ़ने का. दैट्स अ लवली ट्रैक कमिंग अप, पैदल है मुश्किल के साउंडट्रैक से. Let's give that a listen, guys, and I'll see you next hour. Good morning, everyone. Once again, from the desk of The Morning Show, Renuka says hello.

0: 3, 2, 1.
1: और रेस सिर्फ स्पीड की नहीं, दिमाग की भी है।
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

कहाँ जाके रुकेगी, कहाँ जाके रुकेगी ये टेंशन कि भैया कौन सी सीट में बैठेंगे हम एरोप्लेन में. ऑन रेडियो मसी 24/7 इवन इफ यू आर ट्रैवलिंग बिजनेस क्लास ऑन सिंगापुर एयरलाइंस. कुछ कुछ चेंजेस हैं तो भाई जरूर सुनेगा ये वाली खबर पूरे ध्यान से. गुड मॉर्निंग, इट्स द मॉर्निंग शो विद रेणुका. सुबह का असली वेक अप कॉल, द मॉर्निंग शो विद रेडियो मस्ती 24/7. सिंगापुर एयरलाइंस ने चेंज करा है अपना एडवांस सीट सिलेक्शन पॉलिसी फॉर इट्स बिजनेस क्लास विद ऑप्शंस नाउ डिटरमिन्ड बाय फेयर टाइप एंड क्रिस फ्लायर मेंबरशिप स्टेटस. जो पैसेंजर्स ट्रैवलर ट्रैवल कर रहे हैं सिंगापुर एयरलाइंस के लोअर प्राइस्ड बिजनेस क्लास फेयर्स में और क्रिस फ्लायर अवार्ड टिकट्स पर, दे विल नो लॉन्गर बी एबल टू चूज एनी अवेलेबल सीट व्हेन बुकिंग देयर फ्लाइट्स. ये जो नई पॉलिसी है, इट्स ऑलरेडी टेकन इफेक्ट सिंस जून 2 एंड इट अप्लाइज टू ऑल सीट सिलेक्शंस मेड फ्रॉम दैट डेट ऑनवर्ड्स. चाहे आपने टिकट्स पहले खरीदी हो चाहे उसके बाद, ऑल सीट सिलेक्शंस मेड बिफोर जून 2 विल नॉट बी अफेक्टेड. प्रीवियसली एयरलाइन जनरली अलाउ कर रही थी सभी बिजनेस क्लास पैसेंजर्स को एडवांस सीट सिलेक्शन थ्रू आउट द कैबिन, लेकिन अंडर दिस न्यू पॉलिसी पीपीएस क्लब मेंबर्स एज वेल एज पैसेंजर्स ट्रैवलिंग ऑन बिजनेस फ्लेक्सी एंड बिजनेस स्टैंडर्ड फेयर्स कैन कंटिन्यू टू सिलेक्ट एनी अवेलेबल सीट व्हेन मेकिंग देयर बुकिंग. पीपीएस क्लब जो है वो हाइएस्ट टियर होता है सिंगापुर एयरलाइंस के क्रिस फ्लायर फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम का, विच इज रिजर्व फॉर पैसेंजर्स हु फ्लाई फ्रीक्वेंटली इन प्रीमियम कैबिन्स. कस्टमर्स जो लोअर प्राइस बिजनेस लाइट टिकट्स खरीद रहे हैं एज वेल एज दोज रिडीमिंग सेवर और एडवांटेज अवार्ड टिकट्स, दे कैन चूज ओनली फ्रॉम अ स्मॉलर सिलेक्शन ऑफ सीट्स एट द टाइम ऑफ बुकिंग. सेवर एंड एडवांटेज आर द टू मेन टाइप्स ऑफ क्रिस फ्लायर अवार्ड टिकट्स व्हिच अलाउ पैसेंजर्स टू रिडीम माइल्स फॉर फ्लाइट्स. सिंगापुर एयरलाइंस के जो स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा कि ये जो चेंज है इट इज अ पार्ट ऑफ एयरलाइंस ऑन गोइंग एफर्ट्स टू मैनेज सीट अवेलेबिलिटी फॉर कमर्शियल रीजंस व्हाइल कंटिन्यूइंग टू अकोमोडेट कस्टमर्स विद स्पेसिफिक needs. भाई साहब, अगर आप बिजनेस क्लास की टिकट में भी आप अपनी टिकट सीट नहीं कर सकते हैं चूज, तो भाई साहब ऐसा है कि फिर तो जिंदगी जीने का कोई मतलब ही नहीं है ना, क्या कहेंगे. बिल्कुल, सिंगापुर एयरलाइंस अपोलोजाइजेस टू ऑल कस्टमर्स अगर उनकी प्रेफर्ड सीट अवेलेबल नहीं है तो. या राइट, गुड मॉर्निंग.

की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 live.

फिल्म चाहे 125 करोड़ बना रही हो लेकिन फिर भी कंट्रोवर्सी अराउंड इट, नॉट अ वेरी पॉजिटिव साइन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह का असली वेक अप कॉल, द मॉर्निंग शो विद रेडियो मस्ती 24/7। टेरी फिल्म स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा पेडी की बात कर रही हूँ मैं। टॉलीवुड फिल्म जो है ये, और इसमें देखी गई है जानवी कपूर अलोंग विद रामचरण। फिल्म ने 125 करोड़ जरूर बनाए हैं 4th ऑफ जून को रिलीज होते ही, और आज क्या डेट है, अरे आज तो सिर्फ 8 ही है, लेकिन फिर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज। जी हाँ, सेट इन द 1980s रूरल आंध्र प्रदेश ये जो फिल्म है, इट फॉलोज अ स्पिरिटेड विलेजर्स हु यूनाइट्स हिज कम्युनिटी थ्रू स्पोर्ट्स टू डिफेंड देयर प्राइड अगेंस्ट अ पावरफुल राइवल। साउंड्स वेरी लगानिश, राइट? लेकिन उसी में ग्लोबल RRR स्टार हमारे रामचरण जो है, मार्क्स अ हाई प्रोफाइल तेलुगु प्रोजेक्ट फॉर जानवी कपूर जो प्ले कर रही है फीमेल लीड अच्छी अम्मा। Creative team, well, it is directed by Buchi Babu Sana with a massive pre-release hype fueled by its chart-topping track Chikiri Chikiri. Lekin sabse badi baat hai about female objectification. Ji haan, the primary backlash it centers on the writing and camera angles regarding Janvi Kapoor ka character. Audiences or critics sabhi ne aggressively call out kiya his film ko for reducing her to an object of male desire, noting cringe-worthy visual sequences where the hero describes her face but the camera explicitly cuts to close-ups of her midriff and the chest. ये कंट्रोवर्सी काफी एक्सप्लोड हो गई ऑनलाइन जब जानवी कपूर के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर वायरल पोस्ट गया दैट लेबल्ड द 350 करोड़ मूवी एज द मोस्ट एक्सपेंसिव डिसरिस्पेक्ट एवर पेड टू अ लीडिंग वुमन इन इंडियन सिनेमा। अब आप सोच सकते हैं कि इतनी बेइज्जती वाले कमेंट्स के बाद में अगर 125-150 करोड़ फिल्म ये बना भी लेती है तो भी जानवी कपूर के करियर का इससे क्या फर्क होगा, आई कांट कॉमेंट। Oh, by the way, Diljit Dosanjh, of course, on the airwaves, जो कि हमारे कुछ listeners को बहुत पसंद है, लेकिन साथ ही में एक ऐसा गाना है जिसके बाद मुझे डांट पड़ी फ्राइडे को। जी बिल्कुल, अभी फिलहाल मैं ये चलाऊंगी, लेकिन मुझे कहा गया था कि मंडे सुबह बताऊंगा आपको, और क्या बताया उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। गुड मॉर्निंग। La la la la

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10 का 20।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musty Top 20, only on Radio Musty 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: All right, and at the end of our show today, good morning once again, and of course this is Renuka with you on the morning show. सुबह 7 बजे से हम साथ साथ यहाँ पर इस समय जाने से पहले सिर्फ एक ही बात आपको याद दिलाना चाहूंगी.
2: मंडे कॉफी का बेस्ट पार्टनर द मॉर्निंग शो ऑन रेडियो मस्ती 24/7 न्यूज व्यूज एंड अ पिंच.
1: जब हम करते हैं कोई नया काम तो आप जानते हैं कि वो काम या तो कभी ने किसी ने किया नहीं होता या किया होता है तो उससे कहीं बेहतर होता है हमारा वो काम.
3: आपकी नॉलेज आपकी जीत.
4: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
1: जी बिल्कुल, मैं आपको एक बार और पर्सनली बुलाना चाहूंगी टू पार्टिसिपेट इन द लायन सिटी चैलेंज. जी हाँ, एक बहुत ही बढ़िया सा गेम, नॉलेज बेस्ड गेम है टोटली, लेकिन आई प्रोमिस यू इट्स गोइंग टू बी एब्सोल्यूटली फन. सो वॉट यू हैव टू डू इज, सबसे पहले तो आप हमें टेक्स्ट कर दीजिए लायन, सो दैट वी कैन सेंड यू द क्वेश्चंस व्हिच विल बी द प्री क्वालिफिकेशन राउंड. आप जैसे ही उसका जवाब देंगे हमें व्हाट्सएप पर उन क्वेश्चंस का, तो आप बिल्कुल क्वालिफाई करेंगे हमारे नेक्स्ट राउंड के लिए. और नेक्स्ट राउंड जो है हमारा प्रॉपर शूट है स्टूडियो में एंड एवरीथिंग, इट्स लाइक अ गेम शो राइट, एंड इट विल बी अ लॉट ऑफ फन. आफ्टर ऑल मस्ती है तो फन तो होगा ही राइट. सो डोंट वरी गाइज, ऑफकोर्स वी विल डील विद इट, वी विल हैव द सीरीज टुगेदर. इसको पूरा का पूरा बनाएंगे बिल्कुल सिंगापुर ऑडियंसिस के लिए लाइक नेवर बिफोर, एंड वी विल हैव अ लॉट ऑफ फन इन द प्रोसेस. सो डोंट यू बैक ऑफ, हमें आपका सपोर्ट चाहिए, हमें आपकी पार्टिसिपेशन चाहिए, एंड वी रियली डू होप हर चीज की तरह आप हमें इसमें भी साथ देंगे और हमारे साथ साथ आगे बढ़ेंगे मस्ती मीडिया नेटवर्क को अपनी कंपनी समझ के. ऑलराइट, सो लेट्स डू दैट गाइस, बिकॉज वेल यू डू नो दैट रेडियो मस्ती 24/7 द मस्ती जॉक्स एंड ऑफकोर्स मस्ती मीडिया नेटवर्क का पूरा जो एकदम नेटवर्क है, ये सब सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी के लिए है. और अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो यार हम यहाँ रह के क्या करेंगे, है कि नहीं. इसी इमोशनल एंगल के साथ में सेइंग माय गुडबाइज टू यू ऑन दिस ब्यूटीफुल मंडे मॉर्निंग एंड होपिंग दैट यू विल राइट अवे टेक्स्ट अस एंड से दैट यू वांट टू पार्टिसिपेट इन द लायन सिटी चैलेंज. हैव अ फैंटास्टिक रेस्ट ऑफ मंडे एंड ऑफ कोर्स द रेस्ट ऑफ द वीक अहेड. मिलूंगी आपको बहुत ही जल्द, टिल देन टेक गुड केयर, बाय फॉर नाउ.

0: आरजे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: का जुगाड़।
1: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
2: न करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
3: Forty percent off. Joy Alukas.
4: 40% off. Oh my God. Let's go.
5: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge.
6: Soon,
5: Joy Alukas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry, and 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.
2: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा।
7: हाँ जी जी।
2: आधा kg मसूर दाल।
7: जी जी।
2: काजू किशमिश। ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं।
7: जी जी।
2: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
7: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
2: क्या जी?
7: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
2: वाह जी, क्या बात जी।
7: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें, समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtapes with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 AM onwards only on Radio Musti 24/7 Live.
0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
2: मैं आरजे अनुपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
3: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
4: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Musti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Musti 24/7. Email a brief intro to info@radiomusti.com.sg requesting for an application form.
5: Good morning.
0: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे, फिर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

मंडे ने ना अटेंडेंस लगा दी है जी। हेलो नमस्कार। कुछ लोग अभी भी ना वीकेंड की मेमोरी से बाहर तो आ नहीं पाए और कुछ लोग ना पूरे दिन की मीटिंग्स और डेडलाइंस और ट्रैफिक के साथ एक बहुत ही छोटी सी लड़ाई वड़ाई लड़के अपना दिन जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। वेल द सीन व्हाटएवर इट इज, एक बात तो पक्की है कि अब जो भी आगे आएगा वो आपके लिए काफी लाइट हार्टेड होने वाला, लाइक हल्का फुल्का। हेलो सिंगापुर, हेलो एवरीवन, मैं हूँ आरजे मुग्धा लाइव फ्रॉम द स्टूडियोज और आप सुन रहे हैं मस्ती हैंग आउट ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, सिंगापुर का एकमात्र हिंदी रेडियो स्टेशन। पता तो है ना, पता ही होगा ऑफकोर्स। तो आइए आज की डेट पर आते हैं और आज की डेट है 8th of June। ऑब्जर्व किया जाता है आज के दिन को एज वर्ल्ड ओशन डे। सिंगापुर और समंदर का भी देखा जाए ना तो रिश्ता ना बड़ा काफी पुराना है एक तरह से। इस सिटी ने ना हमेशा ओशंस के थ्रू कल्चर्स को, स्टोरीज को एंड अपॉर्चुनिटीज को ना कनेक्ट किया है। अच्छा, इसीलिए समंदर हमें एक बहुत ही सिंपल बात सिखाता है पर बहुत गूढ़ बात सिखाता है कि चाहे दिन कितना भी बिजी हो, थोड़ी सी कामनेस जरूरी होती है, तभी तो रात और समंदर का बड़ा गहरा नाता है। तो आइए टेंशन को हम थोड़ा साइड में रखते हैं, वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ाए ना बढ़ाए वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। खुद को डेडिकेट कर दीजिए अच्छे म्यूजिक, अच्छी बातों और अच्छे कॉन्टेंट के लिए।

दिस इज मी मुग्धा ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव के मस्ती हैंगआउट पर वापस आके बातें बहुत सारी हैं। जोश में रहो।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हाँ ये वेलकम बैक। अच्छा सिंगापुर, एक बात बताओ, क्या आप वो दोस्त हैं जो जब क्विज के आंसर्स होने हो, क्वेश्चन आंसर चल रहे हो, सबसे पहले से हाथ ऊपर कर देते हैं कि उनको पता है, लाइक जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, हर टॉपिक पे ना कॉन्फिडेंस के आप साथ बोलते हो कि मुझे पता है? तो फिर दिस इज द टाइम फॉर यू खुद को प्रूव करने का सबके सामने। मस्ती मीडिया नेटवर्क प्रेजेंट्स द लायन चैलेंज, लायन सिटी से आपके लिए सिंगापुर स्मार्टेस्ट गेम शो, जहां पे नॉलेज विंस। यहां पे ना नॉलेज ही आपकी असली स्ट्रेंथ होने वाली है और आप जीत सकते हैं एक्साइटिंग कैश प्राइजेस एंड सम अमेजिंग गिफ्ट्स आल्सो। पार्टिसिपेट करना बहुत ही सिंपल है, आपको टेक्स्ट करना है लायन, दैट्स LION ऑन 9151-8963 पर, और हमारी टीम ना आपको बाकी आगे का जो क्वालिफिकेशन प्रोसेस है वो सारी डिटेल्स आपको समझाएंगे व्हाट्सएप के थ्रू। याद रखिए, शो में आगे बढ़ने के लिए आपको स्टेप्स क्वालिफाई करने हैं, जैसे कि आपको दो सवालों के जवाब देने होंगे, आपको दो क्वेश्चंस दिए जाएंगे और दोनों के सही जवाब आपको देने होंगे अगले स्टेज तक पहुंचने के लिए। हर सेट क्वेश्चंस के लिए आपके पास जवाब भेजने के लिए 2 दिन का वक्त होगा। 2 दिन के बाद उस सेट ऑफ क्वेश्चंस का जो विंडो है वो क्लोज हो जाएगा, एंट्री विंडो। समझ रहे हैं? मतलब स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जाएंगे और ये स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे बढ़ना है वो हमारी टीम आपको बताएगी। पर शुरुआत के लिए आपको क्या करना है, एक टेक्स्ट करना है LION लायन ऑन 9151-8963 पर। बाकी बातें इस LION के बाद। तो हो जाइए तैयार, डोंट जस्ट लिसन टू द चैलेंज, इंतजार मत करिए। टू बी अ पार्ट ऑफ इट, टेक्स्ट LION एंड सेंड इट टू 9151-8963।

this message, eh?

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद RJ मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हाय एवरीवन, कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हम किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना, तो हमें उसे हमेशा अपने पास रखना चाहिए, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, हमसे कहीं दूर नहीं जा सकता। प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल, हमें पता होता है कहीं ना कहीं, लेकिन क्या हर बार प्यार का मतलब आपको उस चीज को पकड़ के रखना होता है? अब आप सोचेंगे ये मुग्धा अभी अभी ऐसे स्टार्ट होते ही नहीं, इमोशनल बातें क्यों कर रही है? बिकॉज ये सिंगापुर की बात है जी। एक बहुत ही खूबसूरत सी स्टोरी और आर्टिकल पढ़ा मैंने, जहाँ पे हमारे सिंगापुर का जिक्र था। मुझे लगता है कि ये एक कहानी बहुतों को इंस्पायर कर सकती है। सिंगापुर के एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं, और वो जो है वो गए मंगोलिया अपनी माँ को खोने का दुख और बर्नआउट से निकलने के लिए। वो आर्टिस्ट मंगोलिया गए, वहां पे उनकी मुलाकात हुई बेकू नाम के बहुत ही यंग ईगल हंटर से। ये जो आर्टिस्ट है उनका नाम है सियुआन। अब हुआ क्या कि बेकू और उसका जो ईगल है उनका भी रिश्ता सालों पुराना था। दोनों साथ साथ बड़े हुए, दो साथी, एक तरह से दे वो फैमिली टू ईच अदर। लेकिन क्या है ना, इनके ट्रेडिशन में, ईगल्स एंड उनके हंटर के ट्रेडिशन में, एक वक्त ऐसा आता है जब हंटर को अपने ईगल को आजाद करना होता है। ओह माय गॉड, इट्स लाइक आपने एक डॉग को पाला फिर आपको उसको आजाद करना है। नो माय गॉड, मैं नहीं कर सकती, पर करना पड़ेगा। एंड जब ये हुआ, सियान उस दिन वहां पे मौजूद थे। उन्होंने देखा कि बेकू ने अपने सबसे करीबी साथी को बिल्कुल नहीं रोका, उसे उड़ने दिया। एंड शायद ये वो मोमेंट था जो कि उस आर्टिस्ट सियान को कभी समझ आया, उस वक्त समझ आया कि किसी को खोने और किसी को छोड़ने में फर्क होता है। क्योंकि कुछ रिश्ते ना खत्म नहीं होते, उनका एक स्वरूप बदल जाता है, रूप बदल जाता है। सो बेसिकली सियान अपनी मॉम के उस डिमाइस और उनके बर्नआउट से निकल नहीं पा रहे थे, उनके जाने के गम को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। हाउ कुड शी लीव हर? एंड वहां पे उन्होंने सीखा, हमारे सिंगापुर में आके उन्होंने सीखा कि हाउ इट्स इम्पोर्टेंट टू लेट गो। बेकू ने अपने ईगल को जाने दिया, ही लेट इट गो, रुका नहीं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कुछ चीजों को छोड़ देना।
2: था कौन मेरा, एक तू ही था।
1: I hope you like the story. अच्छी लगी हो तो एक thumbs up बना के 9151 8963 पर जरूर भेजना। I would love it. Stay tuned.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: Shahi Maharani for the special treat.
3: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
4: Thank you Shahi Maharani for comforting and mouth-watering flavors.
3: Thank you.
5: Thank you.
4: Thank you.
2: Thank you. We love you.
6: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Veg and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
7: Seedhi baat boring hai. Teri baat aur sarcasm milega. Only on Masti Hangout with RJ Mugdha. Radio Masti 24/7 Live. Radio Masti 24/7 Live. Well, इमोशनल फेज के बाद आइए जरा फैमिली आउटिंग की बात कर लेते हैं। सो इफ यू आर प्लानिंग अ वीकेंड विद फैमिली या फ्रेंड्स, आप डाइन इन की जगह ढूंढ रहे हैं तो बिल्कुल मत ढूंढिए। आई गॉट द प्लेस फॉर यू। डाइन इन के लिए इस जगह से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। दिस इज राफल सिटी में लोकेटेड शाही महारानी। एंड व्हाई दिस इज द बेस्ट मोमेंट? इस समय वो अपनी 25 ईयर सेलिब्रेशन जो है वो सबके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं और यहाँ पे उनकी जो आइकॉनिक डिशेज है ना, जो कि आप जैसे चिकन टिक्का, तंदूरी चिकन, चिकन मक्खन वाला

पालक पनीर एंड मेनी मोर, ये उनके आइकॉनिक फेवरेट्स क्लासिक्स है। आप इन सारे डिशेस को ले सकते हैं जस्ट 25+ डॉलर्स में, अदरवाइज इनका कॉस्ट अलग है। और ये सब आपको तब मिलेगा अगर आप अपना पूरा फैमिली या गैदरिंग के साथ जाते हैं और आपके पूरे टेबल का एक मिनिमम बिल आता है 100+ डॉलर्स, तो आपको ये सारी डिशेस सिर्फ 25+ डॉलर्स में ही मिल जाएंगी। सो बेसिकली अपने 25 साल पूरे होने को सेलिब्रेट कर रहा है शाही महारानी विद एवरीवन हु इज कमिंग टू डाइन इन विद देम। बस छोटी क्लॉजेस हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड देन यू कैन एंजॉय द 25 गोल्डन ईयर्स ऑफ शाही महारानी विद देयर आइकॉनिक गोल्डन एंड सिल्वर डिशेस अपनी फैमिली के साथ। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके लिए बटर चिकन या तंदूरी फ्लेवर कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता है, ये अच्छा एक्सक्यूज हो सकता है अपनी नेक्स्ट फूड आउटिंग सबके साथ प्लान करने का। ठीक है, मैं मुग्धा आपके साथ, दिस इज मी रेडियो मस्ती पर, स्टे कनेक्टेड।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हाय एवरीबॉडी, शो के दूसरे आवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज मी मुग्धा और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। बॉलीवुड आवर में ऑफिशियली हम एंटर हो चुके हैं एंड एक नाम जो है वो फिर से है हेडलाइंस में, नॉट फॉर एनी मूवी, नॉट फॉर एनी परफेक्शन और दिस एंड दैट, जबकि ये नाम ऐसी वजहों से चर्चाओं में है जो सुन के लोग कह रहे हैं वेट व्हाट, ये तो होना ही था, वैसे हम सब जान ही रहे थे। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, आमिर और गौरी जो हैं वो शादी की जो उनकी खबरें हैं बहुत तेजी से वायरल हो रही थी, पर अब ये सब कुछ सही है। एक्चुअली बहुत तेजी से चीजें डेवलप हो रही हैं और आमिर ने कुछ ऐसा कहा है कि लोग कह रहे हैं अच्छा मतलब सच में शादी हो रही है क्या। यस, पूरी स्टोरी जो है एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, जो लाइफ है ना वो चाहे कितनी भी सक्सेसफुल क्यों ना हो, हर इंसान की जर्नी अलग होती है। कभी कोई प्लान्स काम करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी रिलेशनशिप्स अनएक्सपेक्टेडली ऐसे मोड पे आ जाते हैं कि हमको लगता है ओके जस्ट लेट देम गो, और कभी कभी कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनके बारे में कभी आपने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था और उनसे आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर खुलता है। सो बेसिकली आमिर और गौरी शादी कर रहे हैं, इसीलिए लोग सेलिब्रिटी वेडिंग्स में इतनी दिलचस्पी लेते हैं। शादी सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं है बल्कि एक्चुअली इट्स अ फ्रेश बिगनिंग, ये उसका सिंबल है।

0: शादी के बाद वो बाहर आएंगे घर के तो उनको सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर देंगे।
1: आप

0: 3, 2, 1.
1: और रेस सिर्फ स्पीड की नहीं, दिमाग की भी है.
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151 8963.

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजी मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हाय एवरीवन, दिस इज मी मुग्धा और आप सुन रहे हैं यस मस्ती हैंग आउट। पहले फिल्मों का एक रूल हुआ करता था, जो पर्दे पर आ गया दैट इज फाइनल, आने के बाद कोई चेंज नहीं। ऑडियंस को पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो वो भी ठीक है, क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या सोशल मीडिया के दौर में ना कहानी बदल गई है। आजकल ऑडियंस ना टिकट खरीद के सिर्फ फिल्म नहीं देखती है, वो अपनी राय देती है और इतनी जोर से देती है कि फिल्म मेकर्स को सुनना पड़ता है, और इतना सुनना पड़ता है कि कई बार चेंजेस रिलीज के बाद हो जाते हैं। अभी हाल ही में एक फिल्म आई ना पेटी, सोशल मीडिया पे कई व्यूवर्स ने जानवी कपूर का जो कैरेक्टर है उसकी पोर्ट्रेल को लेके क्वेश्चन मार्क उठाए। आईब्रो रेज्ड, ऑल द चाचीज मामीज एंड ताईज आर इन द हाउस, योर ब्रो। उनका कहना है कि उनके कैरेक्टर को जिस तरह से दिखाया गया है दोबारा सोचने की जरूरत है। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, क्रिटिसिज्म को इग्नोर करने के बजाय डायरेक्टर जो है ना बुचे बाबू, वो सामने आए और माफी मांगी, ही अपोलोजाइज्ड। उन्होंने कहा कि जिन हिस्सों पे लोगों को आपत्ति है हम उसे बदल देंगे। सोचिए, एक वक्त जब ऑडियंस थिएटर के बाहर आई, दोस्तों से बात की, अब ऑडियंस क्रिएटर के पास जाके उनसे बात कर रही है, बदलो हमें नहीं पसंद है। आई थिंक दिस इज द रियलिटी ऑफ न्यू एंटरटेनमेंट एरा। अब कॉन्टेंट सिर्फ बनाया नहीं जाता है, लगातार उस पर कॉन्वर्सेशन होती है। वैसे अगर मैं साउथ की फिल्मों की बात करूं, इज जानवी द फर्स्ट वन जिनको इस तरह से पोर्ट्रे किया गया है, या शी इज जानवी दैट्स व्हाई द आईब्रोज आर रेज्ड एंड द कंसर्न्स हैव बीन पॉप्ड अप। क्योंकि मैंने बहुत सी साउथ की फिल्में देखी हैं एंड मेनी अ टाइम्स मेनी एक्ट्रेसेस हैव बीन पोर्ट्रेड लाइक दैट, व्हाई नॉट अर्लियर? इट्स अ बिग क्वेश्चन मेरे दिमाग

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकैज़म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: वेब सीरीज की दुनिया में आजकल बहुत सारा एक्शन है, बहुत सारा क्राइम है, बहुत सारा थ्रिलर भी है, लेकिन कभी कभी ना बहुत सिंपल चीजें, बहुत सिंपल कहानियां ही आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगती हैं। आपको लगता है ऐसा कोई कुछ क्यों नहीं बना रहा है। एक सीरीज ग्राम चिकित्सालय, यू रिमेम्बर, छोटे सा गांव, स्ट्रगलिंग हेल्थ सेंटर और एक डॉक्टर जो सिस्टम को बदलने निकला है, लेकिन धीरे धीरे खुद भी बदल जाता है। इस सिंपल और हार्ट वार्मिंग स्टोरी ने ना कई लोगों के साथ कनेक्ट भी किया और कई लोग इससे कनेक्ट हुए भी। Now there's a season 2, the fans, उनके लिए good news है। ग्राम चिकित्सालय season 2 officially 23 जून को तो रिलीज ही हो जाएगा, Amazon Prime पर स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगा। मतलब ये कि हमारे जो डॉक्टर प्रभात है ना और हमारे जो भातखंडी गांव है हमारा, वहां जो कहानी है उसके आगे बढ़ेगी। पहले सीजन में तो हेल्थ केयर, गांव की जिंदगी, वहां का जो क्वर्की कैरेक्टर्स है उनके, वो सब लोगों को बहुत एंटरटेन कर रहे थे। अब इस सीजन में आगे और चैलेंजेस हैं जो हमें देखने हैं। मुझे लगता है टीवीएफ के शोज की एक बड़ी खास बात है कि वहां पे ना बड़े बड़े ट्विस्ट से ज्यादा छोटी छोटी ह्यूमन स्टोरीज पे भरोसा करते हैं वो, और शायद इसी वजह से ना ऑडियंस उनके कैरेक्टर्स याद रखती है, उनसे कनेक्ट कर पाती है और इंतजार करती है व्हेन 2, व्हेन 3, व्हेन 4, व्हेन नेक्स्ट। तो अगर आपने पहला सीजन देखा है तो काउंटडाउन आप शुरू कर चुके होंगे ऑब्वियसली, और अगर नहीं देखा है तो चाहे पहले पहला सीजन देखो, उसके बाद अपने आप मन कर जाएगा दूसरे सीजन के

0: सिंगापुर बोर्ड हो, गेम खेलनी है, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? एक्साइटेड?
1: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
3: हाँ जी जी,
2: आधा kg मसूर दाल,
3: जी जी,
2: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
3: जी जी,
2: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
3: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
2: क्या
3: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
2: वाह जी, क्या बात जी।
3: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: आधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: आजकल ग्रोसरी शॉपिंग ना बहुत स्मार्ट हो गई है कि नहीं? एवरी शॉपर इज लाइक वाओ, पहले लिस्ट बनाओ, स्टोर जाओ, लाइन में वेट करो और अब बस कुछ क्लिक्स एंड ग्रोसरी इन, सीधा घर तक। अगर आप हेल्दी ईटिंग को प्रायोरिटी देते हैं तो जीजी मार्ट आपके लिए लेकर आए हैं इंटरेस्टिंग ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस, प्रीमियम क्वालिटी नट्स, आमंड्स, कैश्यूज, फ्लावर सीड्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, सीजनल फेवरेट्स, ये सब कुछ आपके लिए एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे, बहुत सारी चीजें। काफी प्रोडक्ट्स जो है ना वो डायरेक्टली ट्रस्टेड फार्म से आपके घर तक और सोर्सिंग नेटवर्क से आते हैं, तो फ्रेशनेस की क्वालिटी आपको दी जा सकती है बिल्कुल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, घर बैठे आप सारी चीजें ऑर्डर कर सकते हो। फैमिलीज हो, हेल्थ कॉन्शियस पीपल हो, लाइन ना लगाने वाले हो, जीजी मार्ट का फोकस है होलसेम ग्रोसरीज को कन्वीनियंट और अफोर्डेबल बनाना। और फिलहाल सेलेक्टेड कलेक्शंस पे तो काफी सारे डिस्काउंट्स और सेल भी चल रही है, तो आपको जैसे ही मौका मिले आप इन ऑफर्स का फायदा उठाइए, मौके का फायदा उठाइए और ggmartonline.com पे जा करके फटाफट से अपनी पसंद की चीजों की शॉपिंग घर बैठे शुरू कर दीजिए। आई बात समझ में? दो चार चीजें एक्स्ट्रा भी मंगा लेना, मैं भी ले लूंगी आपसे, तो भला तो सबका करो ना, भला और क्या।
2: Hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever-buzzing Facebook page. Radio Musti 24/7 Singapore.

0: बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकैज़म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हे हाय, वेलकम बैक शो के थर्ड एंड द लास्ट आवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं क्या आपको कुछ नया बताने के लिए आई हूँ, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं जरा से शोशा के साथ आऊँ। अगर आप ज्वेलरी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। जॉय आलोकास लेकर आया है द बिगेस्ट ज्वेलरी सेल। मुझे बड़ा मजा आता है बात करने में। खैर, जॉय आलोकास की बात हो रही, तो जॉय आलोकास जो है ना, वो बहुत बड़ी ज्वेलरी की सेल लेकर आया है आपके शहर में। फ्लैट 40% ऑफ और मेकिंग चार्जेस ऑन गोल्ड, डायमंड, पोल की एंड प्रेशियस ज्वेलरी। एंड ये स्पेशल ऑफर सिर्फ 14 जून तक वैलिड है। तो आप समझ रहे हैं कि आपके कैलेंडर में डेट्स जो आपने मार्क कर रखे बहुत तेजी से पास ऑन हो रही हैं। साथ में आपको पता है क्या मिल रहा है? 100% वैल्यू ऑन डायमंड एक्सचेंज एंड ईजी पेमेंट प्लान अवेलेबल हो रहे हैं। तो चाहे आप किसी खास ओकेजन के लिए शॉपिंग कर रहे हैं या फिर खुद के लिए हेवी लेने का प्लान कर रहे हो, की फर्क पड़ता है यार, अब ये और रिवॉर्डिंग होगा आपके लिए। समझ रहे? Visit your nearest Joy Alokas showroom today and make the most of the biggest jewelry sale. Well, do remember all the terms and conditions apply. लेकिन एक चीज जो है वो तो पक्की है और गारंटी है कि इससे बेहतर ज्वेलरी आपको कहीं नहीं मिलेगी।
2: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवघर, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085 6577।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद RJ मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: कभी कभी लगता है कि हम सबकी लाइफ में ना हम एक ही काम करते हैं, हम शॉर्टकट्स ढूंढते रहते हैं और उसके चक्कर में पता नहीं क्या क्या हो जाता है। क्यों स्किप कर दो फॉर्म, बाद में भर लेंगे। कुछ लोग तो शायद सोचते हैं कि एयरपोर्ट जो है ना उसके भी रूल्स आपको सिर्फ ऐसे सजेशंस के लिए होते, फॉलो करा ठीक है, नहीं करा आप कोई बात, ऐसे नहीं है भाई। अर्जेंटीना से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसको सुन के ना लोग जो है पहले तो हैरानी से देख रहे हैं कि क्या, और फिर सोशल मीडिया पे जम के डिस्कशन हो रही है। सो क्या हुआ ना कि एक वुमेन पैसेंजर जो है अपनी फ्लाइट पकड़ने एयरपोर्ट पहुंची। अब प्रॉब्लम ये थी कि उनके कैबिन बैगेज के वेट जो था उनका वो अलाउड लिमिट से ज्यादा था और उसके लिए उनको देनी थी एक्स्ट्रा फीस, देनी पड़ती एक्स्ट्रा फीस, सबको पता है। लेकिन पता ये लगा कि फी पे करने के बजाय वो सीधा प्लेन में चढ़ गए। अब ऑब्वियसली एयरपोर्ट अथॉरिटीज जो है नोटिस कर लिया, उन्होंने पुलिस को बुलाया गया एंड ऑल दैट। जब ऑफिसर्स उन्हें एयरक्राफ्ट से उतारने आए, सिचुएशन बहुत ड्रामेटिक हो गई। यस, कहते हैं ना कभी कभी एक छोटी सी प्रॉब्लम को हैंडल करने की कोशिश में लोग उसे और बड़ा बना देते हैं। यहाँ भी एग्जैक्टली वही हुआ। पहले तो उस महिला ने रेजिस्ट किया एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इन द आर्टिकल एक फीमेल पुलिस ऑफिसर को काट खाया। ये बिच्छू मुझे काट खाएगा। बिच्छू ने नहीं काटा, महिला ने काट लिया। औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, उस महिला ने उस महिला पुलिस को काट लिया। अब ये पूरा इंसिडेंट एक और पैसेंजर ने ना रिकॉर्ड कर लिया अपने फोन पे और अब वो वीडियो वायरल हो गया। बताओ किसी का नुकसान किसी का फायदा। आखिरकार उन्होंने फ्लाइट से क्या किया, उनको उतारा गया, उन्हें उतारना ही पड़ा और अथॉरिटीज ने डिटेन भी किया, फ्लाइट थोड़ी देर के लिए डिले भी हुई और बाद में अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल गए। ब्लैकलिस्ट कर दो भैया इसको उठा के। सच कहूं इस खबर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पता है क्या,

0: some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: आपकी नॉलेज, आपकी जीत।
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: 24/7 लाइव।
1: एक बात बताओ, हर दिन हर रोज हम कितनी सारी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं? न्यूज हेडलाइन, सोशल मीडिया अपडेट्स, स्पोर्ट के स्कोर्स, एंटरटेनमेंट गॉसिप, रैंडम फैक्ट, सब कुछ देखते हैं, पढ़ते हैं, याद रखते हैं, शेयर करते हैं। बट द क्वेश्चन इज, जब जो कुछ आप जानते हैं उसका नॉलेज जो है उसको क्या करें? उसको कहीं पर टेस्ट हो तो काम में लाया जाए, पर टेस्ट हो कहाँ रहा है? ये एग्जाम ये तो नहीं दे सकते ना अभी हम। तो अभी जो नॉलेज आपके पास है, ज्ञान का भंडार, उसका टेस्ट देने के लिए आप रेडी है? बिकॉज मस्ती मीडिया नेटवर्क आपके लाए द लायन सिटी चैलेंज, सिंगापुर स्मार्टेस्ट गेम शो वेयर नॉलेज विंस। समझे? सो दिस इज नॉट जस्ट अ क्विज, बल्कि आपके नॉलेज और आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड की ना अल्टीमेट टेस्ट यहाँ पे कर लिया जाएगा। करंट अफेयर्स, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, जनरल नॉलेज, हर सवाल आपको एक नया चैलेंज दे सकता है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, क्योंकि हम बैठ के बना रहे हैं तो सीधा सीधा तो कुछ नहीं पूछेंगे। आप पार्टिसिपेंट जो है उनके रूल्स आप पढ़ लीजिए। पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सिर्फ एक टेक्स्ट करना है, LION, ये स्पेलिंग तो याद ही होगी, आप तो इंटेलिजेंट हो। कहाँ करना है? यहाँ द स्टूडियो के नंबर पे 9151-8963 पे, ठीक है? उसके बाद जब आपका टेक्स्ट आएगा तो हमारी टीम आपसे खुद ही कॉन्टैक्ट करेगी, और आगे क्वालिफाई करने के लिए आपको दो सवाल पूछे जाएंगे। उन दो सवालों के आपको सही सही जवाब देने हैं, और इन दो सवालों के जवाब देने के लिए आपको दो दिन का वक्त मिलेगा। द विंडो, क्वेश्चन विंडो विल बी ओपन फॉर 2 डेज। इन दो सवालों के सही जवाब देने के बाद ही आप आगे के राउंड्स के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे, और फिर जब क्वालिफाई करते जाएंगे तो आपको टीम अपडेट करती जाएगी। समझे? तो अगर आपको लगता है कि आपका नॉलेज सिर्फ कॉन्वर्सेशन तक लिमिटेड नहीं रहना चाहिए, और नहीं है, तो वक्त आ चुका है उसको प्रूव करने का। समझ रहे हैं ना आप? आइए अपने ज्ञान के भंडार के साथ हमारे इस क्विज शो में लाइन। कहा था ना मैंने, अदाएं बड़ी फंकी करे नौटंकी, ये छोरी घनी ड्रामा क्वीन है।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: to Shahi Maharani for the special treat.
1: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
2: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
1: Thank you.
3: Thank you.
2: Thank you.
0: Thank you. We love you.
4: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Veg and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
5: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा. Only on Masti Hangout with RJ Mugdha. Radio Masti 24/7 Live.
6: और मेरे दोस्त, माय डियरीज, माय सिंगापुरियंस, क्या हाल चाल, कैसे चल रहा है? हाँ, इसी के साथ आज का मस्ती हैंगआउट यहीं पर रैप अप करते हैं. उम्मीद है आज की शाम में थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी सी बातें और बहुत सारी गुड वाइब्स. उम्मीद है आज की शाम में थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी सी बातें और बहुत सारी गुड वाइब्स आपके साथ शेयर कर पाई होंगी मैं. जाने से पहले एक छोटी सी बात आपको बता के जाती हूँ. अगर आपको हमेशा से लगता है कि आपकी आवाज में दम है, आपको बोलना पसंद है, लोगों से कनेक्ट करना पसंद है, या कभी आरजे बनने का सपना देखा है, तो शायद ये मौका आपके लिए है. मस्ती मीडिया नेटवर्क के आरजे अकेडमी में एडमिशन ओपन हो रहे हैं. कर सकते हैं आपके, आ जाइएगा. मस्ती मीडिया नेटवर्क की जो आज के आदमी है ना, एडमिशन ओपन है. बिगिनर से एडवांस लेवल तक की ट्रेनिंग यहाँ पे मिलेगी आपको. हाइब्रिड लर्निंग मॉडल है साथ में, और ऑनलाइन इन स्टूडियो दोनों के एक्सपीरियंस आपको मिलने वाले हैं. कॉम्बिनेशन है. प्रोग्राम जो है वो 14 साल से लेकर के उसके ऊपर तक के एज ग्रुप के लोगों के लिए है. पार्टिसिपेंट्स के लिए इट्स ओपन, एंड सिलेक्टेड ट्रेनीज जो होंगे उनको हमारे रेडियो मसी 24/7 लाइव को होस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमको भेजें. एंड द मेल आईडी इज info@radiomasti.com.sg पर एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वेस्ट करने के लिए. इंट्रो ऐसा लिखना कि हर कोई इम्प्रेस हो जाए. कौन जाने आज आप रेडियो सुन रहे हो, कल आप रेडियो के इस तरफ बैठ के लोगों को सुनाई दे रहे हो, है ना? On this very note, this is me Mugdha signing off. Bye-bye, take care. अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहिए, और याद रखें कि हर नया दिन एक नई कहानी लेकर आता है. Bye-bye.

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.
3: चेक इट आउट.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे
2: हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
3: नो नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
4: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट
5: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन क्या बात है आप तो काफी स्मार्ट निकले तो सुनिए सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान
6: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
0: चेक इट

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back. अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
0: क्या
1: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप.
0: वाजी, क्या बात जी?
1: Order today from Gigi Mart, your personal grocer. जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें. समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन. योर डोज ऑफ 90s नॉस्टैल्जिया, मस्ती 90s मिक्सटेप विद आपकी 90s वाली अंतरा, थर्सडेज 11 AM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
2: मेरे करण अर्जुन आएंगे
0: ना? करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे. हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे.

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए ड्यूटी पर। Non-stop music, non-stop musty. Only on Musty Music Cafe.
1: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore. Check it out.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
3: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7। नाचने का मन है मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
4: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.

0: सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: Thank you to Shahi Maharani for the special treat.
2: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
3: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
2: Thank you.
4: Thank you.
3: Thank you.
1: Thank you. We love you.
0: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature wet and non-veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
5: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके anonymous letters, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। Because sometimes, रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। So write to us, Dear Masti, दिल से।
6: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
0: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे। फिर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

टू रूलिंग द काउंटडाउन. ये है मस्ती टॉप 20 पंपिंग अप फ्राइडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स मस्ती टॉप 20 ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव द ओनली लाइव बॉलीवुड रेडियो अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया सिंस 2009. Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: अकड़ी बकड़ी दिक्क दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिका दिक्कड़ी दिक्क दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिकीरो दिकीरो दिकीरो दिकीरो दिकीरो

0: पार्टी ओवर गो।
1: हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय।
2: नो नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
0: चेक इट आउट।

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back. आपकी नॉलेज आपकी जीत.
1: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: चाहिए आप बोलो हम बनाएंगे, चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल. आपकी प्लेलिस्ट आपकी मस्ती. व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151-8963 पर. मस्ती वॉइस आपकी चॉइस.
3: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.
4: चेक इट आउट.
0: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, फिर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे. मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे.

0: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है।
1: तुमको लेकर
0: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है।
2: मुझे चांद पे ले चलो।
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
2: रात अकेली है। जोश में रहो।
3: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन। फ्रेशली ब्रूड बीट्स

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

हाँ तुम ही डीजे तुम ही हो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस यू से वी प्ले बड़े बड़े हिट्स सुनो ये फिजाएं ये हवाएं भाई बारिश का मौसम माहौल हम लेकर आए कैसा लगा है ना. मैं जब स्टूडियो घुस रही थी मैं बाहर बोल के आई थी कि यार अब जब मंडे की शाम हो ही गई है और इतना सही सा मूड हो ही गया है और समा भगवान जी ने बांध ही दिया है तो थोड़ा सा शावर ऑन कर दीजिए एकदम मजे ही आ जाए है ना. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर हेलो हाय वेलकम नमस्ते. मैं अंतरा यहाँ पर बिल्कुल पहुंच चुकी हूँ ऑन टाइम और मुझसे भी पहले बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्यून इन कर चुके हैं बिफोर 9. सो प्राउड ऑफ मी एंड यू एज वेल. इंतजार इंतजार वही ये कितना इंतजार रहता है कि शाम को अंतरा आएगी फिर उसके बाद मस्ती वॉइस आपकी चॉइस में हमारे पसंद के गाने चलाएगी फिर वो भी जो गाने प्ले करती है वो भी हमें पसंद होते हैं तो ऑल एंड ऑल हमारा जो प्लेलिस्ट बन जाता है मोटा मोटा इट्स क्वाइट नाइस राइट. तो भाई बताइए कैसा है मूड आज सुबह से आपका कैसा रहा आपका वीकेंड वो भी पूछना बिल्कुल बनता है. मेरा बड़ा रिलैक्स सा वीकेंड रहा एंड या यूजुअली ऐसा होता नहीं है. अब मेरे को ना टोटका पता चल गया है कि मैंने कभी बोलना ही नहीं है कि ठीक है यू नो वीकेंड तो आते ही चला जाता है ये है वो है जस्ट आई थिंक डोंट से एनीथिंग दैट इज माय लेटेस्ट टोटका कि कुछ भी जैसा है आन दो जैसा होगा उसके हिसाब से कर लिया जाएगा है ना. व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट. वो मंडे को एक्चुअली सारे ऐसे ब्यूटीफुल थॉट्स आने लगते हैं क्योंकि ट्यूसडे को डियर मस्ती वाला शो होता है ना तो हमारा जो दिमाग है वैसे एकदम इतना अच्छे से चलने लगता है. आई थिंक नॉट ओनली डियर मस्ती वाले शो में जो है वहां पर लोगों के जवाब मिल रहे हैं हमें अपने भी काफी सारे जवाब साथ साथ में ही मिल जाते हैं बट उसकी बात हम कल करेंगे. आज प्रेजेंट पे ध्यान देंगे और आपको ये सोचवाने पे थोड़ा सा मजबूर करेंगे कि सोच के बताइए कि आज कौन सा गाना सुनने का मूड है आप बताओ. ललिता भाई भोपाल में क्या मौसम है यहाँ तो बारिश वारिश एकदम माहौल अच्छा सा हो रखा है.

वेल दिस गाना वॉज प्लेइंग श्रेया घोषाल की आवाज में, आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि जब एक ऐसा गाना प्ले हुआ है तो एक रेट्रो तो इस टाइम पे बारिश वाला बिल्कुल बनता है ना? All the retro lovers who are tuned in at this point of time, आप मुझसे कंप्लीटली अग्री करोगे. एंड here we go. We have to relish the मौसम एंड enjoy the मौसम in every musical way possible. Only on Radio Masti 24/7 live. चल रहा है Masti Wise, आपकी choice. Thank you.

0: की प्लेलिस्ट और हमारा थोड़ा सा मिर्च मसाला। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले।
1: वेलकम बैक, 5:38 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। मैं अंतरा आपके साथ चल रहा मस्ती वॉइस आपकी चॉइस एंड यस बिसतवारो, धुरंधर के बिना तो हमारी कोई भी प्लेलिस्ट इनकम्प्लीट है रे। बट आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट भाई रणवीर सिंह द धुरंधर, दो आई हैव ऑफ कोर्स एन अपडेट फ्रॉम हिज एंड एल्स वेल, बट देन लेट अस टॉक अबाउट ऋतिक रोशन। भाई एक तो इस बंदे से कोई भी अपडेट आना इतना कम हो गया है कि भाई कुछ तो बताओ, कौन सी मूवी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हमें जानना है, सच्ची में जानना है। सो हाल ही में तो मैं उनके इंस्टाग्राम के पेज पे चली गई एंड या ही हैज हिंटेड दैट कि उनको रोल्स ही ऐसे ऑफर नहीं हो रहे जो वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो भाई सारे जितने भी फिल्म मेकर्स हैं वो उनकी आंखों से ये बंदा सिर्फ एक गुड गाय ही बन सकता है, लाइक इसका एक हीरो टाइप का ही इमेज वो सामने लाना चाहते हैं। बट ऋतिक रोशन को करना है उनका, जो उन्होंने एक्सप्रेस किया है अपना डिजायर टू टेक ऑन मोर लेयर्ड एंड डार्कर एंड यू नो चैलेंजिंग कैरेक्टर्स, एंड ही आल्सो इंडिकेटेड दैट ही इज वेटिंग फॉर द स्क्रिप्ट्स दैट अलाउ हिम टू ब्रेक अवे फ्रॉम हिज एस्टैब्लिश्ड ऑन स्क्रीन पर्सोना एंड एक्सप्लोर न्यू क्रिएटिव टेरिटरी एज वेल। एंड यही उन्होंने लिखा, दैट जस्ट गॉट आस्क व्हाट्स द काइंड ऑफ रोल आई एम लुकिंग फॉर एंड आई सरप्राइज माइसेल्फ व्हेन इट केम टू मी, रिमेंबर जफर फ्रॉम लक बाय चांस, दैट्स द वन आई वुड जंप ऑन समथिंग लाइक दैट, बट डायरेक्टर्स ओनली वांट मी टू सी एज अ गुड गाय व्हिच इज वेरी वेरी सैड। भाई सर आप अपने लुक्स देखो पहले तो, है ना, ऐसे तो मतलब वो वाला है ना पू वाला डायलॉग कि कोई हक नहीं बनता कि आप इतने खूबसूरत देखो। भाई कितना खूबसूरत बंदा है यार वो, क्या हैंडसम लगता है, ग्रीक गॉड ऑफ बॉलीवुड ऐसे ही थोड़ी ना नाम देते हैं। हालांकि जब विलन बहुत गुड लुकिंग हो तो वो भी एक बहुत ही अलग वाइब देता है एंड आई एम टोटली इनटू दैट एज वेल। सो आई होप दैट ऋतिक रोशन गेट्स हिज फेयर शेयर ऑफ मूवीज लाइक द वंस ही वांटेड। हर किसी को मौका मिलना चाहिए यार, जो उनको करने का मन करे ना एक बार वो चीज बिल्कुल शिद्दत से कर लेनी चाहिए, दैट्स व्हाट आई बिलीव इन लाइक कंप्लीटली। बट उसी के साथ भाई आज मैं शिद्दत से अपने गाने प्ले करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी शिद्दत के ऊपर टॉप प्रायोरिटी है सबसे इंपॉर्टेंट आप की जो है चॉइस ऑफ गाने। सो व्हाइल यू आर थिंकिंग अबाउट विच सॉन्ग टू रिक्वेस्ट अंतरा को ऑन मस्ती वॉइस आपकी चॉइस 9158963 पर, मैं यहाँ पर फटाफट से जो है अमित की चॉइस प्ले कर देती हूँ, क्योंकि वो क्या है ना ऑफिस के बीच में आई नो वो ऐसे ना जल्दी जल्दी से कि अभी मेरे पास 10 मिनट है, फटाफट से मेरा गाना प्ले कर दो, आई एम लव इट लाइक स्नीक आउट करके ऐसे। सो वेल हियर यू गो, दिस इज फ्रॉम रहना है तेरे दिल में, मैडी का गाना मैडनेस के साथ ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। गुड इवनिंग।

एंड यस इट्स द टाइम फॉर हमारी अगली रिक्वेस्ट बैक टू बैक. सपना आंटी ने 3 घंटे हर घंटे की एक रिक्वेस्ट दी है मुझे. तो भाई पहले घंटे का पहला रिक्वेस्ट है, यू गो ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.

0: हाँ हाँ तुम ही डीजे तुम ही हो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस म्यूजिक वी प्ले बड़े बड़े हिट्स सुनो।
1: तो बताइए आपकी चॉइस क्या कहती है मेरे दोस्त। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतर आपके साथ यहाँ पे चल रहा है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस। भाई आपकी रिक्वेस्ट के गाने मैं बिल्कुल प्ले करना चाहती हूँ एंड ऑलरेडी प्ले कर भी रही हूँ, पर उसके लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा। बिंदास बताइए, एक चॉइस बताइए, दो चॉइस बताइए, जो आपके मन में है वो बताइए, बिकॉज ये तो सबकी कुछ आप ही का है नहीं आए बट देर इज समथिंग मोर जो आपका बिल्कुल बन सकता है। भाई आई एम टोटली इंटू नाउडेज nuts and seeds and ये सारी चीजें। तो जब जब मेरे को ऐसा कुछ सोच में आता है, जहन में आता है, तो आई हैव बीन एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड विद जीजी मारा और उनका आम वाला सीजन जो उन्होंने मुझे इतना दिल खुश कर दिया ना मेरा कि मैं बता नहीं सकती थी। सो देन आई एम लाइक they just got me over there and I keep on going back over there. So if you go to ggmartonline.com ka website and just type Krishiwal nuts, okay, if you go and try, it's like a if you are a dry fruits ka lover and aapko wo cashews and you know salty ones or the roasted almonds ya fir those pistachios, so Krishiwal dry fruits jo hai bilkul aapke liye hazir hai wahan par. And ek to natural goodness jo hey hey with the ingredients you can trust and the flavors you will all love, but it's farm fresh, it's straight from like earth to your bowl, सीधा आपके लिए 100% ऑर्गेनिक, कोई पेस्टिसाइड्स नहीं एंड सस्टेनेबल इको फ्रेंडली पैकेजिंग के साथ बिल्कुल उसको आप बिल्कुल ले सकते हैं। एंड देयर इज अ लॉट, देयर आर पंपकिन सीड्स, देयर आर यू नो रोस्टेड एंड सॉल्टेड पिस्ताशियोस, देयर इज मैकेडेमिया नट्स, बहुत सारा कुछ है। आई वांट यू टू गो लॉग ऑन टू ggmartonline.com एंड गो एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ नट्स। यू विल गो नट्स वैरायटी देख के और क्वालिटी तो डेफिनेटली 110%। आई ऑलवेज टेल यू, मतलब ऐसी बात तो हम बताते ही नहीं है जिसमें क्वालिटी की बात ही ना हो, है ना। इसी बात पे आगे बढ़ते हैं और ये घंटा भी बस ऑलमोस्ट रैप अप ही होने को आया है, क्या कहते हो मैं कहती हूँ गुड इवनिंग। अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
2: हाँ जी जी,
1: आधा केजी मसूर दाल,
2: जी जी,
1: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
2: जी जी।
1: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
2: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
1: क्या जी?
2: जी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
1: वाह जी क्या बात जी,
2: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।

0: डॉग रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है।
1: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक

0: हाँ हाँ तुम ही डीजे तुम ही हो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस यू से वी प्ले बड़े बड़े हिट सुनो।
1: पहली बार जब हमने इसको देखा था क्या कहूँ यार तब से ही हम उसी के हो बैठे हैं कौन है ये रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर ऑफ कोर्स मैं अपनी बात मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ थैंक यू सो मच अगर आपने मेरे बारे में सोचा टू मच हो गया इट्स ओके इट्स द ड्रामेटिक मंडेज यू सी 6 बजकर हो चुके हैं 6 मिनट यहाँ पर रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर जो आप सुन रहे हैं मस्ती वॉइस आपकी चॉइस एंड भाई जिंदगी के ये चॉइसेस जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ आपके लिए डिसाइड करते हैं कि आप कहाँ पे खड़े हो किस मुकाम पे खड़े हो। और पहली बार हम वैभव सूर्यवंशी को जो हमने देखा था क्रिकेट की पिच पर खेलते हुए एंड आईपीएल में तो भाई इस लड़के ने जो ही आतंक आप कह सकते हो उस कैटेगरी में दूसरों के लिए कि यार ये इसको तो किसी का डर ही नहीं है यू मस्ट हैव हर्ड अ लॉट अबाउट हिम राइट भाई बात कुछ ऐसी है लेडीज एंड जेंटलमैन जो क्रिकेट प्रेमी है उनको तो पता ही होगा बीसीसीआई जो है उन्होंने इंक्लूड कर दिया है हमारे 15 साल के इस लड़के को यस दे हैव अलाउड टीनेज सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी जो है फॉर द टूर ऑफ आयरलैंड एंड इंग्लैंड में हमारे इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा बनने के लिए और बीसीसीआई ने यह भी कहा है दैट दे आर सेट टू बेयर ऑल द एक्सपेंसेस जस्ट टू यू नो हेल्प द 15-year-old दिस प्रोडिजी टू एडजस्ट टू लाइफ इन द सीनियर इंडियन क्रिकेट टीम। भाई ये तो है ही है उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है क्योंकि अभी तो भाई बच्चा तो है ही चाहे आप कितना भी कह लो कितना भी प्रोडिजी बुला लो ही इज एट द एंड ऑफ द डे ही इज जस्ट अ किड ओके एंड दैट इज व्हाई बीसीसीआई हैज आल्सो अलाउड वैभव सूर्यवंशी के पेरेंट्स टू अकंपनी हिम इन द अपकमिंग टूर एज वेल। इनके बीसीसीआई के सेक्रेटरी जो है देवजीत साइकिया जो है दे सेड द मूव वाज एम्ड टू इंश्योरिंग दैट द यंगस्टर रिमेन्स कंफर्टेबल एज ही इज काइंड ऑफ ट्रांजिशनिंग फ्रॉम द एज ग्रुप cricket to the demands of senior international cricket. That is very, very true. क्योंकि वो बच्चा है वी हैव डिसाइडेड टू अलाउ हिज पेरेंट्स टू अकंपनी हिम सो दैट दे कैन बी विद हिम एंड हेल्प हिम सेटल डाउन इन द न्यू एनवायरमेंट एंड भाई दिस इज हिज मेड इन इंडिया कॉल अप फॉर द T20 इंटरनेशनल सीरीज इन आयरलैंड एंड इंग्लैंड एंड द एशियन गेम्स आफ्टर अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग आईपीएल 2026 का कैंपेन जो इस लड़के ने किया है विच हैड 776 रन्स फॉर राजस्थान रॉयल्स माय गुडनेस ही इज सम अलग लेवल ऑल टुगेदर एंड वी ऑल अग्री विद दैट ओके। अब बस देखना ये है कि आगे आगे देखो होता है क्या बस ज्यादा कुछ मत बोलो गेम देखते रहे आगे बढ़ते रहे लेट्स लुक एट इट फ्रॉम द पैशन ऑफ क्रिकेट एंड नॉट कि भाई इसको तो अब कुछ करके ही दिखाना होगा ना लेट हिम प्ले अ गुड गेम एंड लेट्स वॉच एंड एंजॉय द स्पोर्ट ऑफ क्रिकेट नहीं दैट्स द वे टू गो। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर उसी पैशन के साथ हम भी कुछ लाने वाले हैं लेट मी कम बैक एंड टेल यू मोर अबाउट इट।

0: 40% off. 40% joy alukas.
1: 40% off? Oh my god! Let's go! Let's go!
2: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joyalukas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joyalukas, the world's favorite jeweler.
3: Are you ready?
4: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
5: बजते ही नाचना जरूरी है. मस्ती वॉइस आपकी चॉइस. यू से वी प्ले.
6: इस गेम शो को भी पूरे पैशन के साथ खेलना बन सकता है आपकी अपनी चॉइस, और वो चॉइस आपको जिता सकता है काफी सारा कुछ. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द लायन सिटी चैलेंज सिंगापुर. 6:00 हो चुके हैं, 17 मिनट. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर. जी हाँ, मैं अंतरा आपके साथ. एंड यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्मार्टेस्ट गेम शो, जहां पर जीत सिर्फ और सिर्फ नॉलेज की होने वाली है. भाई, महफिल में जब बैठे हुए होते हैं, मैं हाल ही में किसी को ऐसे ही मैं बताने जा रही थी, क्योंकि कुछ डिस्कशन चल रहा था पॉलिटिक्स के ऊपर, विच इज वेरी नॉर्मल. जब बहुत सारे दोस्त लोग बैठते हैं तो ये पॉलिटिक्स के ऊपर कहीं ना कहीं एक डिस्कशन शुरू ही हो जाता है कि इंडिया में क्या चल रहा है क्या नहीं. बट देन हर किसी के पास अपनी अपनी तरह की नॉलेज होती है. बट इफ यू थिंक दैट यू आर काइंड ऑफ अप टू डेट विद एवरी सिंगल थिंग विच इज हैपनिंग अक्रॉस द ग्लोब और नेशनल सिंगापुर में या फिर इंटरनेशनल या फिर इंडिया में, एंड मे बी कहीं पर भी जहां पर डिस्कशन होती है, यू आर ऑलवेज द वन, और यू थिंक दैट देयर इज समवन who is absolutely fit for this game show, feel free. 16 year old and above can participate in the Lion City Challenge. And agar aapko lag raha hai that you have what it takes to compete in a game show like never before, because this is Radio Masti 24/7 Live. Hum jab bhi kuch laate hai na, wo bahut hi unique aur hatke hota hai aur bilkul ekdam amazing cheeze hi hoti hai yahan par. So it's time to put your knowledge to test. Ji haan, bahut sare exciting prizes and winnings to hai hi up for grabs. बट आपको पहले पार करना पड़ेगा सबसे पहला पड़ाव, विच इज द टेक्स्टिंग फेज, कि आपका इंटरेस्ट हमें बताना पड़ेगा. यू जस्ट हैव टू टेक्स्ट अस लायन LION 9151-8963 पर हमें ये टेक्स्ट करके भेज दीजिए. उसके बाद आपको जो है पहले पड़ाव के दो सवाल भेजे जाएंगे. उनका जवाब जब आप दोगे तो आप नेक्स्ट फेज में जाओगे, जिसको आप हमारी टीम जो है आपको बिल्कुल गाइड करती हुई रहेगी. एंड या इफ यू नो इट यू नो इट, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हुए जाओ कि उसके बाद आप फिर स्क्रीन पे आओगे, आपको बुलाया जाएगा हमारे गेम शो के लिए, जहां पर माहौल बिल्कुल अलग होगा. एंड इट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली एक्साइटिंग एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. सो डोंट जस्ट लिसन टू द चैलेंज, बी अ पार्ट ऑफ द चैलेंज, द लायन सिटी चैलेंज. टेक्स्ट फटाफट लायन LION टू 9151-8963 एंड लेट्स सी इफ सिंगापुर स्मार्टेस्ट माइंड जो है, दैट कुड बी यू. या दैट कुड बी यू.

0: बाजू
1: ट्रैफिक अपडेट
2: 6:27 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में. सीधा चलते हैं सिंगापुर की सड़कों पर और जानते हैं क्या है ट्रैफिक का हाल चाल. एक एक्सीडेंट की खबर है ऑन बिनॉय रोड अवे फ्रॉम AYE जस्ट बिफोर AYE एंड अवॉइड करें लेन नंबर 2. व्हीकल ब्रेकडाउन की खबर ऑन TPE टुवर्ड्स PIE आफ्टर पुंगौल रोड और हैवी ट्रैफिक आपको मिलेगा ऑन PIE टुवर्ड्स इटवास बिटवीन BKE एंड थॉमसन रोड. सो ये रहा इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट और यहाँ पर रिक्वेस्ट और आ चुकी है हमारी ललिता की ऑल द वे फ्रॉम भोपाल जिन्होंने हमारा फेसबुक पे एक बहुत ही क्यूट सा फादर डॉटर का जो है गाना हमने पोस्ट किया है. तो वो देखकर ललिता ने हमें बताया दैट भाई ये जो फादर डॉटर है वो एक्चुअली भोपाल से है एंड उसी के मतलब ललिता के मोहल्ले में ही वहां पर रहते हैं. कभी कभी लगता है दुनिया कितनी छोटी सी है ना. आपके साथ भी अक्सर ऐसे हुआ होगा कि बातों बातों में हमें अच्छा तुम भी वहां से हो तुम भी वहां से हो एंड देन यू गो लाइक ओ माय गॉड द वर्ल्ड इज सो स्मॉल इट इज लाइक दैट. किसने सोचा था जो आज हमारे पेज पे है एक ऐसा कनेक्शन कहीं से निकल आएगा. लाइफ इज हसीन लाइक टोटली हसीन. इसी बात पे ललिता का रिक्वेस्ट कमिंग अप नेक्स्ट रेट्रो वन फॉर ऑल द रेट्रो लवर्स आउट देयर ऑन मस्ती वॉइस आपकी चॉइस.
1: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore. Check it out.

0: हिट्स आपकी प्लेलिस्ट और हमारा थोड़ा सा मिर्च मसाला मस्ती वॉइस आपकी चॉइस यू से वी प्ले।
1: क्या चल रहा है रणवीर सिंह की जिंदगी में आओ जानते हैं क्योंकि हमें तो जानना जरूरी है कि भाई यह रायता और कितना फैला है और कितना और आगे फैलेगा। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतराब के साथ और यहाँ पे चल रहा है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस। तो भाई बात वो है डॉन 3 वाले एग्जिट की बात है, ठीक है। उस बीच में फॉइस ने बैन लगा के हटा भी लिया और जो है अब जाके जो है उसके बाद हमारे रणवीर सिंह ने सू भी कर दिया उसके बाद का पता नहीं, लेकिन अब वो धीरे धीरे खुल रहे हैं। और या हम वेट ही कर रहे थे कि जब रणवीर सिंह खुलेंगे तो फिर हमें भी पता चलना चाहिए कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। तो ये नई रिपोर्ट्स जो रूमर के जैसे फैली हुई है बॉलीवुड की हवाओं में, कुछ ऐसा सुनने को आ रहा है दैट रणवीर सिंह जो है ही एडमिटेड जब इनकी मीडिएशन टॉक्स चल रही थी दैट ही वुड हैव नॉट एग्जिटेड डॉन 3 If Dhurandhar had not become a blockbuster, क्या बात कर दी इन्होंने। Now, of course, ये जो revolution हुआ है, reports की मानी जाए, it emerged during this discussion which was happening between the actor and the Excel Entertainment, जो production company है उसके बीच में, following his controversial departure from the film. Meanwhile, Faiz जो है, उन्होंने withdraw किया अपना non-cooperation directive, allowing industry workers to again collaborate Ranveer Singh के साथ projects में. But yeah, Ranveer Singh ने apparently कह दिया है कि Dawn 3 मैंने छोड़ा नहीं होता अगर धुरंधर blockbuster नहीं हो जाती सर। सब कुछ सही तो चल रहा था वैसे रणवीर, है ना। कभी कभी कहते हैं कि चुप रहना भी एक बहुत बड़ी कला है। नहीं, बड़े बूढ़े कह के गए हैं, मैं जस्ट स्टेट कर रही हूँ। सो अगर तो उन्होंने ये बोला है तो आई एम श्योर दैट यू नो कुछ सोच समझ के ही बोला होगा। ये ऐसा मैं बिल्कुल दिल से कहना चाहती हूँ क्योंकि विद रणवीर सिंह एंड गिवन हिज पर्सनैलिटी एंड ऑल आई ऑलवेज से दैट उनकी टीम और जो मैनेजर होंगे ना हमेशा कहते रहे सर सर सर सर सर सर सर नहीं अभी सर नहीं यहाँ नहीं सर सर सर प्लीज सर। या यू गेट माई पॉइंट। सलमा आपका गाना बिल्कुल प्ले किया जाएगा यहाँ पर क्योंकि रणवीर सिंह की बात हुई है। गहरा हुआ जो है अभी भी काफी गहरा हो रखा है हमारे टॉप चार्ट्स में भी। मुझे पता चला है आज की डेट में मेरा गाना नंबर 3 पे पहुंचा दिया गया है और नंबर 1 पे अभी तक जाइए सजना ही है। तो रेणुका वही गाना सुनते हुए आजकल वापस फिर से जा रही है। ऑफकोर्स गहरा हुआ के बाद अपना थी आपका बारिश वाला गाना, हालांकि मुझे पता लगा कि बाहर बारिश वापस से थम चुकी है, बट देन द सेकेंड घंटे का सेकेंड गाना आपकी रिक्वेस्ट coming up on Radio Masti 24/7 Live. Good evening.

0: डीजे तुम ही हो. मस्ती वॉइस आपकी चॉइस. यू से वी प्ले. बड़े बड़े हिट सुनो.
1: मैं तो भाई मंडे को एक ही शाम वाले शो में मोर्चा लेकर निकलती हूँ कि आई कैन नॉट कीप एवरीबॉडी हैप्पी बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अनप्रॉब के साथ यहाँ पे चल रहा है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस. में भाई सबकी रिक्वेस्ट अलग अलग है क्योंकि आप सब एक दूसरे से अलग अलग हो राइट. तो मेरा काम तो ये है आज की डेट में कि जिसका जो भी सुनने का मन किया अगर है और उन्होंने मुझे बताया है दैट ये प्ले कर दो एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स लाइक पीपल टेल मी ऑल्सो कि भाई इस टाइम पे प्ले करना वो टाइम पे प्ले करना एंड ऐसे प्ले करना और वैसे प्ले करना ऑल दोज थिंग्स विच इज नाइस. और जब तक मेरे पॉसिबिलिटी के दायरे में रहता है एंड आई डू दैट एंड यू नो दैट राइट. तो इसीलिए थोड़ा सा मांडवली करके चलते हैं राइट एवरीबॉडी ओके क्योंकि अभी यहाँ पर जो है हमारे दविंदर पाजी ही ऑलवेज गिव्स मी सच स्पेसिफिक टाइमिंग. मैं तो क्लॉक देखती रह जाती हूँ. फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा सा मेरे को आगे पीछे का टाइम भी दीजिए. सो ही इज ट्यून्ड इन कंप्लीटली एंड ही इज वेटिंग फॉर हिज रेट्रो नंबर एज वेल. एंड जैसे हमारी निकिता है एंड लाइक निकिता देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो जानते हैं दैट घंटे मुझसे स्पेसिफिकली मांग ये होती है कि घंटे के एंड में हमारा गाना तो लगाना मत ठीक है क्योंकि हमें पता है. आई एम ग्लैड आपको पता है.

यू नो वेरी वेरी नाइस. सो वेल कमिंग बैक टू भाई, चलो थोड़ी बहुत मूड चेंज करते हैं ना, ज्वेलरी वूलरी खरीदने की बात करते हैं, जिससे मतलब एकदम दिमाग एकदम ऐसा हो जाए कि ये हुई ना बात, है ना. चले जया लुकास फिर इसी बात पे, क्योंकि वो एक तो है वर्ल्ड्स फेवरेट ज्वेलर, बट वहां पर चल रहा है फिलहाल इनक्रेडिबल फ्लैट 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर कोल्ड डायमंड पोलकी एंड प्रेशियस ज्वेलरी. आई नो 14th ऑफ जून को जो है ये ऑफर का जो है वैलिडेशन बिल्कुल खत्म होता है, तो जब तक वैलिडिटी है तब तक मेक द फुल यूज ऑफ इट. एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस यू कैन गेट 100% वैल्यू ऑन द डायमंड एक्सचेंज एज वेल अलॉन्ग विद इजी पेमेंट प्लान्स. टर्म्स एंड कंडीशन डेफिनेटली अप्लाइड है, बट वी ऑल नो दैट वेन वी टॉक अबाउट जया लुकास 412320 सरंगुन रोड पर जो है, आप किसी भी इनके आउटलेट में जाए, वी नो द क्वालिटी, वी नो द वैरायटी, एंड वी नो दैट दे आर द बेस्ट. And that's why we always tell you. और जब इस तरह के ऑफर्स आए ना, इसको जाने नहीं देना है, बस नहीं देना है, तो प्लान बनाए जया लुकास जाए, है ना. इसी बात के साथ दविंदर पाजी आपका ये गाना रफी साहब की आवाज में, एंड ऑफकोर्स निकिता 7 बजे के उस पार ही चलाऊंगी मैं तुम्हारा गाना, टेंशन मत लो.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।
2: 3, 2, 1।
0: अब रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है।
3: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: हम ही हो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस यू से वी प्ले बड़े बड़े हिट्स सुनो
1: पहुंच चुके हैं 7 बजे उस पार वेलकम वेलकम रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतरा आपके साथ यहाँ पर चल रहा है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस भाई ये गाना जो है हमारी निकिता की बिल्कुल चॉइस पे यहाँ पर चला है और अब हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है तो सब अपनी अपनी चॉइसेस सोच ले मुझे बता दे वरना मेरी चॉइस के गाने भी आप इंजॉय कर सकते हैं एंड देयर इज ऑल्सो एन ऑप्शन पर उसी के साथ साथ एक है जिनको जिनके पास चॉइसेस तो है लेकिन वो शादी करना चाहते नहीं हो और एक ये है कि जिनको choices मिलती हुई जा रही है वो शादी करते हुए जा रहे हैं एंड दिस सिलसिला इट इज जस्ट kind of going on and on and on. Yes, I'm talking about Aamir the Khan. जी हाँ, सब सलमान खान से एक ही सवाल पूछते हैं कि भाई भाई शादी क्यों नहीं कर रहे भाई शादी क्यों नहीं कर रहे अंदाज अपना अपना के अमर प्रेम में से देखिए क्या क्या चल रहा है एक तरफ ऐसा दूसरी तरफ वैसा But well, आमिर खान जो है he has kind of declared कि भाई जुलाई का महीना और हो गई है डेट कंफर्म कि मैं गौरी के साथ शादी करने वाला हूँ लाइक ऑफिशियली फॉर द सोसाइटी अदरवाइज तो वो मतलब ओपनली डेट तो कर ही रहे हैं एंड ये एक्चुअली किसी पॉडकास्ट पे ये गए हुए थे खान साहब हमारे आमिर खान साहब एंड उन्होंने कहा दैट गौरी एंड आई मेट बाय मिस्टेक एंड वी कनेक्टेड एंड वी बिकेम फ्रेंड्स एंड देन लव हैपेंड मतलब मैं जब जब आमिर खान के जिंदगी की कहानी पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई प्यार तो प्यार होता है ना किसी से भी और किसी वक्त भी हो सकता है उम्र के किसी पड़ाव में भी हो सकता है नाउ ही ऑल्सो ओपन अप अबाउट हिज इमोशनल स्टेट बिफोर मीटिंग हर एंड ही सेड दैट मैं गौरी से जब मिला उससे पहले आई फेल्ट लाइक दैट मेरी काफी उम्र हो गई है Do I have to say something over here? But no, let me control myself. And who will I find in this age? Also, my therapy started and I understood that I need to love myself first and make myself healthy. So I worked on that. I had two very strong, deep relationships with Kiran and Reena. Unki ex-wives ki ye baat kar rahe hai. And we are close till date and we still respect each other. All the men really want to ask you that, like how? But I never thought I would meet anyone with whom I could bond this way. क्या ये वो चैप्टर है जहां पे ये कहानी बिल्कुल who knows right प्यार तो कभी भी हो सकता है स्लो मोशन अंग्रेजा मैं गाना इसलिए गा रही हूँ क्योंकि this is the way I stop myself from saying a lot of things which I want to say right now. जानने के लिए मुझसे अलग से WhatsApp पे आप बिल्कुल बतिया सकते हैं चिटिया सकते हैं लेकिन फिलहाल के लिए गाने की तरफ हम लोग फिलहाल जा सकते हैं Radio Masti 24/7 Live पर

0: Singapore, prepare for impact.
1: 3, 2, 1.
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: Thank you to Shahi Maharani for the special treat.
4: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
5: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
4: Thank you.
6: Thank you.
5: Thank you.
3: Thank you. We love you.
7: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffles City. Celebrate with 6 Shahi Signature wet and non-veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
8: गाना बजते ही नाचना जरूरी है. मस्ती वॉइस आपकी चॉइस. यू से वी प्ले.
9: भाई 25 साल पूरे होने का जश्न तो बनता ही बनता है, वो भी बिल्कुल शाही स्टाइल में बनता है. 7 बजकर हो चुके हैं 19 मिनट. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतर आपके साथ. यहाँ पर मस्ती वॉइस आपकी चॉइस. आप सुन रहे हो आपकी और मेरी दोनों की चॉइस के गाने. एंड यस, आई थिंक वी ऑल आर एंजॉइंग इट. अभी तो है ना आ रहा है मजा. ऐसा कर दे मैं अपनी चॉइस की चलाती हूँ फिर. हाँ, फिर सारे मजे फिर उसी पे आ जाएंगे. वेल कमिंग बैक टू 25 साल ऑफ शाही महारानी. ऑफकोर्स वी हैव टू सेलिब्रेट. कम ऑन, कितनी बार होता है. और यहाँ पर हम शाही महारानी के खानों की जो है तारीफों के पुल मानते रहते हैं. इनफैक्ट कुछ ऐसा ही है कि अभी भी मैं बात कर रही हूँ, आई कैन विजुअलाइज लाइक ऑल माय फेवरेट डिशेस व्हिच आई ऑलवेज गो टू शाही महारानी एंड आई रिलिश दोस डिशेस. और मेरे मुंह में पानी आ रहा है उसको बात करते हुए. एंड दैट इज द प्रूफ दैट हाउ मच आई लव लव लव देयर फूड. एंड हमें ये भी पता है कि ऑल ऑफ आवर लिसनर्स जिन्होंने कभी हमसे वाउचर जीता है या फिर अलग से भी वहां पे शाही महारानी खाने गए हैं, यू हैव ऑलवेज Relish. So, इस बार जब शाही महारानी अपना सेलिब्रेशन कर रहे हैं और अपने सेलिब्रेशन 25 साल में वो ये बोल रहे हैं कि शाही महारानी के जितने भी सिग्नेचर क्लासिक डिशेज है, वेज एंड नॉन वेज दोनों, जैसे चिकन टिक्का हो गया, चिकन मक्खन वाला हो गया, देन पालक पनीर हो गया, शाही सब्ज सिज़लर हो गया, ऑल ऑफ दीज डिशेज विल बी अवेलेबल एट $25 plus इफ योर टेबल हैज ऑर्डर $100 plus का जो है ऑलरेडी मेन्यू में से. सो अदरवाइज प्राइस इससे ज्यादा है, बट देन ऑफकोर्स 25 साल में कुछ तो एकदम बढ़िया सा सेलिब्रेशन बनता ही बनता है, एक बढ़िया सा ऑफर भी बनता है. सो शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट जो राफल सिटी में जो है सेलिब्रेट कर रहा है अपने 25 ईयर्स ऑफ द रॉयल फ्लेवर्स दे हैव गिवन अस अलॉन्ग विद द ब्यूटिफुल मेमोरीज विच वी हैव काइंड ऑफ मेड ओवर देयर इन वहां पे उनके रेस्टोरेंट में. इतना मतलब कौन कौन सी यादें मैं पिक करके बताऊँ, यही कभी कभी सोचने लग जाते हैं. बट थैंक यू टू देम फॉर गिविंग अस सच अमेजिंग फूड, क्योंकि मेरा तो लव लैंग्वेज ही खाना है. खाना अच्छा हो तो माहौल तो मेरे लिए ऐसे ही अच्छा हो जाता है. सो डेफिनेटली 30th of June तक जो है इनका ये एनिवर्सरी स्पेशल का जो है बिल्कुल चल रहा है, तो उससे पहले अपना रिजर्वेशन कराएं. जाए शाही महारानी 6235-8840, दैट्स देयर नंबर, या www.shahimaharani.com यू कैन लॉग ऑन टू द वेबसाइट एंड चेक इट आउट ऑल बाय योरसेल्फ. एंड इट इज नाउ आवर टर्न आई थिंक टू गो एंड सेलिब्रेट इट विद देम. नहीं, गुड इवनिंग.

0: बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: म्यूजिक का हमारे मूड से कितना गहरा रिश्ता है ना, यानी कि अभी ये जो श्रेया ने गाना रिक्वेस्ट किया एंड आई प्लेड एंड शी वाज लाइक कि यू नो आफ्टर अ लॉन्ग डे दिस इज सच अ ब्लेसिंग दैट यू कैन जस्ट रिक्वेस्ट एंड लिसन टू अ गाना विच पेप्स अप योर मूड राइट एकदम सही इट वक्त। आई मीन लाइक सुनकर ऐसी इतनी अच्छी फीलिंग आती है ना जब जब आप सब ये ऐसा कुछ लिखते हो, इट रियली रियली आई फील फजी हमें दिल में। अच्छा ज्यादा फजी नहीं फील करते हैं, हम जाते हैं सीधा सिखपुर की सड़कों पर। लेट मी गिव यू इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट। व्हीकल ब्रेकडाउन आपको मिलेगा ऑन AYE टुवर्ड्स इटवास आफ्टर टुवर्ड्स वेस्ट रोड। हैवी ट्रैफिक की खबर ऑन AYE टुवर्ड्स इटवास between Tuas checkpoint and Tuas West Drive, or vehicle breakdown aapko milega on PIE towards Tuas after Bidock North Avenue 3. So well, ye tha traffic ka update. Agli khabar jo hai is gaane ke us paar beat ko abhi thoda sa wahi pe rakhte hai jahan pe lagar ki yaar theek hai chalo let's do it besharam rang ho jaye let's go।
3: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

0: 40% off. 40% joy alukas.
1: 40% off? Oh my god! Let's go! Let's go!
2: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joyalukas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joyalukas, the world's favorite jeweler.
3: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
4: हाँ जी जी,
3: आधा kg मसूर दाल,
4: जी जी,
3: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
4: जी जी,
3: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
4: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
3: क्या जी?
4: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर. जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप.
3: वाजी, क्या बात जी.
4: Order today from GG Mart, your personal grocer.

0: आपकी प्लेलिस्ट और हमारा थोड़ा सा मिर्च मसाला। मस्ती बॉयस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले।
1: गाने लिख लिख के भेजे जा रहे, हमें तो लूट लिया मल के हुस्न वालों ने, इंद्रा और रेणुका ने। यस यस, आई नो, क्या करे। हमारी कुछ शख्सियत ही ऐसी है, टू मच। रेडियो वस्ती 24/7 लाइव पर अंतराप के साथ है यहाँ पर। और भाई जो फैंस होते हैं ना, वो तो कुछ अलग ही लेवल पे होते हैं, एंड मेरे को फुल रेस्पेक्ट आती है क्योंकि ऑफकोर्स मैं भी फैन हूँ। सो या फॉर ऑल द फैंस आउट देयर, भाई रामचरण ठीक है, और उनके जापनीज फैन, आप बिलीव कर सकते हो, रामचरण सर एंड उनके जापानीज फैन। भाई कुछ ऐसा हुआ, दो फैंस उनके जापानीज, मसामी एंड क्रिस जो है, दे टुक अ 5-day लीव फ्रॉम वर्क। फिर वो ट्रैवल किए टोक्यो टू हैदराबाद आफ्टर पेडी, जो उनकी मूवी है पेडीज जापान रिलीज, वाज कैंसल्ड। सो दे प्लान टू वॉच द रामचरण स्टारर अप टू 10 टाइम्स अक्रॉस डिफरेंट थिएटर्स टू एक्सपीरियंस द फिल्म विद द इंडियन ऑडियंस देमसेल्व्स। भाई ये है ग्लोबल फैन बेस ऑन फुल डिस्प्ले, HD 4K। आई मीन जस्ट इमेजिन, राइट? हु वुड हैव थॉट? एंड दे जस्ट डिडंट वांट टू मिस द एक्सपीरियंस। सो वो हैदराबाद पहुंचे 2 दिन पहले बिफोर द फिल्म का रिलीज टू जॉइन द सेलिब्रेशंस एंड वॉच द मूवी विद द लोकल ऑडियंस। एंड वीडियोज ऑफ दिस डुओ इंटरैक्टिंग विद द फैंस एंड द मीडिया आउटसाइड द थिएटर्स, इट्स जस्ट गॉन वायरल। दे वर सीन सिंगिंग सॉन्ग्स फ्रॉम द फिल्म, ओके, एंड इट्स अ बिग थिंग, ओके। आप मतलब कभी कभी होता है ना कि बंदा और जिस जबान में वो बात कर रहा है वो मैच नहीं कर रहे होते हैं, बट देन इट जस्ट लुक्स अमेजिंग, राइट? सो वेल, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, द टू हैड ऑलरेडी वॉच्ड पेडी मल्टीपल टाइम्स शॉर्टली आफ्टर द रिलीज, एंड उनको और भी बार बार जब तक वो इंडिया में है, दे वॉन्ट वॉच इट अगेन एंड अगेन। सो दैट्स नॉट सम फैन गर्लिंग और फैंडम मोमेंट, I tell you, and it can be about anything, right? Because girls like to swing. Gaana hai coming up next on Radio Basti 24/7 Live. Good evening.

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में? वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

0: हाँ हाँ तुम ही डीजे तुम ही हो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस उसे वी प्ले बड़े बड़े हिट्स सुनो
1: Well, Radio Mastery 24/7 Live पर अब वो वक्त आ चुका है जब मुझे यहाँ से जरूर जाना पड़ेगा. आप सुन रहे थे मस्ती बॉयज आपकी चॉइस, मैं आंत्रा आपके साथ थी यहाँ पर. एंड किसी ने मुझे अभी यहाँ पर रेकमेंड किया कि जाकर माँ बहन देखो मेरे का क्या क्या क्या क्या बट मैंने जबरदस्ती का रिएक्शन दिया. आई न्यू वट she was talking about. So Madhuri Dixit ka jo hai ye kuch series hai and people are really highly recommend. I have just seen some reels and shots of it and I completely love how these three girls are kind of, these three women are kind of acting in it. So kafi interesting lag raha hai. So that's my going to be watch very very soon, maybe next weekend. Yeah, kyunki tabhi
2: time tabhi milta hai. Ha weekday mein thodi na time milega.
1: Well, आपका टाइम मैं ज्यादा नहीं लूंगी. फटाफट से एक बार रिमाइंडर जरूर डालना चाहूंगी दैट लायन सिटी चैलेंज के लिए इफ यू वर अप फॉर इट देन टाइप लायन एंड सेंड इट टू अस 9151896 3 पर. इट्स अ गेम शो एंड यू जस्ट कैन नॉट मिस इट. आई नो दैट यू हैव इट इन यू. आई नो दैट यू नो हमारा जब भी ऐसे कोई सवाल जवाब वाले सेशन जनरली जब होते हैं तो आप बहुत ज्यादा ही एक्टिव रहते हैं उसमें. सो यस, इट्स टाइम दैट वी टेस्ट द नॉलेज you have and yeah jaise jaise aage badhte hue jayenge aapko batate hue jayenge but definitely to cross the first stage you need to text line to us on 9151896 isi baat ke sath kuch ghante ka break and main wapas is subah hazir ho jaungi Tuesday morning show lekar on radio wasti 24/7 live. Filhal ke liye good night, bye bye, sleep tight, I'll see you tomorrow morning.

0: देखो देखो वो आ गया।
1: सिंगापुर, जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: सुनिए यादों का कारवा विद समर, याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने, तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: अच्छी सूरत से ज्यादा अच्छी सीरत का होना जरूरी होता है, क्योंकि अच्छी सीरत वाला शख्स सबके दिलों पर राज करता है और माहौल और मोहल्ले को खुशनुमा बनाकर रखता है। इसलिए आप जब भी सोचें, अच्छा सोचें और खुश रहें। यही कहते हुए मैं कर रहा हूं आपका स्वागत। नमस्कार, आदाब, एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा है आपका समर रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। शुरू हो चुका है यादों का कारवा। तो आज यादों का कारवा गुजरेगा 1993 और 94 के दो सालों से। इन ईयर्स में कौन सी फिल्में रिलीज हुई थी उनके बारे में बातें करेंगे, उनके गानों के बारे में बातें करेंगे और साथ ही बातें करेंगे पर्दे के पीछे की भी। तो 1993 के साल की अगर मैं बात करूं तो ये वो साल था जब बॉलीवुड से दो बहुत बड़े कलाकार हमें अलविदा कह गए थे हमेशा हमेशा के लिए। पहली तो थी बहुत तेजी से उभर रही और बहुत हिट हो रही अभिनेत्री दिव्या भारती। इसी साल वो एक दर्दनाक हादसे में अपने घर की बालकनी से गिरी और हमसे हमेशा के लिए दूर हो गईं। लेकिन ये सितारा बॉलीवुड के आसमान में आज भी चमक रहा है। और दूसरे इश राम प्रसाद, मुझे नहीं जी उत्पल दत्त। मुझे मालूम है मैं उनकी नकल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे वो बहुत पसंद है। लेकिन यही वो साल था 1993 जब वो हमें अलविदा कहकर चले गए। लेकिन जैसा मैं कहता हूँ ना हमेशा, कलाकार कभी मरता नहीं, कलाकार अपनी कला के साथ हमेशा अमर रहता है। इसीलिए तो आज हम उनकी बातें कर रहे हैं। तो चलिए फिलहाल मैं शुरू करता हूँ आज का शो अपनी पहली फिल्म के साथ। ये पहली फिल्म थी 1993 में ही आई, आईना। गोरिया रे गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा, जॉली मुखर्जी और लता जी की आवाज में ये गाना याद आया आपको? दिलीप सेन, समीर सेन का म्यूजिक और समीर अंजान के लिखे हुए बोलों से सजा था ये गाना। दीपक सरीन ने ये फिल्म बनाई। दीपक सरीन साहब यशराज जी को असिस्ट किया करते थे इससे पहले, लेकिन यशराज जी ने उन पर भरोसा जताया और इस फिल्म के डायरेक्शन का जिम्मा उन्हें सौंप दिया। फिल्म में जैकी श्रॉफ, अमृता सिंह, जूही चावला, सईद जाफरी के साथ दीपक तिजोरी भी नजर आए थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्मों में शुमार थी उस साल के। और ये जो गोरिया रे गाना है ना, इसमें एक अलग तरह की चीज दिखाई गई है। दो दो फुट के बैम्बूज को डांडिया बनाकर पीट रहे, टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग ना, जो शुरू शुरू में जो बीट साथी ना वो वही है। और ये वो फिल्म थी आईना जिसमें पहली बार इस आईने में अपनी शक्ल देख रहे थे जैकी श्रॉफ, यशराज फिल्म्स के बैनर के आईने में। जी हाँ, यशराज के साथ उनकी ये पहली फिल्म थी। और इस फिल्म का जो सारा क्रेडिट है ना वो अमृता सिंह ले गई। हालांकि जूही चावला उस वक्त की लीडिंग लेडीज में नंबर वन की पोजीशन पर पहुंच रही थी और ये फिल्म उनके करियर में एक माइलस्टोन साबित हुई थी, लेकिन अमृता सिंह ने कमाल का काम किया। और अमृता सिंह को इस फिल्म के लिए जूही चावला और अमृता सिंह ने जो रोल किया था, ये दोनों ही रोल ऑफर किए गए थे, लेकिन अमृता सिंह ने चुना नेगेटिव शेड वाला किरदार और क्या खूब निभाया, बहुत खूब। अच्छा, इस फिल्म के पीछे की कहानी भी बता देता हूँ मैं आपको। कास्टिंग के वक्त ये डिसाइड किया गया था कि जूही चावला वाला जो रोल है ना, इसे श्रीदेवी को ऑफर किया जाए, और किया भी गया था। लेकिन श्रीदेवी इससे पहले लम्हे फिल्म में काम कर चुकी थी और उन्होंने यशराज जी को साफ कह दिया कि लम्हे से कम अगर कोई रोल हुआ तो मैं आपकी कोई फिल्म नहीं करूंगी। तो इस तरह से श्रीदेवी ने ये फिल्म छोड़ी और फिर उसके बाद ये फिल्म मिली अमृता सिंह को और इस रोल ने अमृता सिंह को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिलाया उस साल। तो इस लिहाज से आईना बहुत ही मकबूल फिल्म रही। और इसका एक गाना जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, जो अब तो मेरे ख्याल से हर शादी ब्याह में गाया जाता है, बन्ना। वो क्या है कि नॉर्थ इंडियन शादियों में एक परंपरा होती है शादी के गीत गाने की। शादी होने से कई दिन पहले ये परंपरा शुरू हो जाती है, जब मोहल्ले की महिलाएं आती हैं, ढोलक बजाती हैं और रात भर बन्ने गाती हैं। उसी में शामिल है ये गीत, बन्नो की आएगी बारात, पामेला चोपड़ा ने सिखाया। कमाल का गाना था और आज भी ये लेडीज संगीत में तो बहुत बजता है। पामेला चोपड़ा का परिचय देने की जरूरत है? पहचान गए आप? जी, आदित्य उदय की मम्मी पामेला चोपड़ा, यशराज जी की पत्नी। वो बहुत अच्छा गाती भी है, उन्होंने कई फिल्मों में गाया है और एक्टिंग भी की है। उनके बारे में मैं आपको बताता रहूंगा, लेकिन फिलहाल इस फिल्म से और उस दौर के कुछ गानों से शुरू तो करें आज का शो यादों का कारवां। सुनते रहिए समर के साथ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

0: Are you ready?
1: Are you ready?
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
0: Are you ready?
1: Are you ready?
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: जीत कर हारने वाले को बाजीगर कहते हैं, ये मशहूर डायलॉग तो आपको याद होगा। वेलकम बैक, मेरा नाम है समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं यादों का कारवां। और ऐसी कुछ फिल्मों को याद करा रहा हूं मैं, उससे जुड़े किस्से आपको सुना रहा हूं। ये फिल्म थी बाजीगर, 1993 में आई थी और इस फिल्म के डायलॉग्स इतने दमदार थे कि एक लंबा वक्त गुजर जाने के बाद भी ये महसूस नहीं होता है कि ये फिल्म अभी बनी है या तब बनी थी। बाजीगर फिल्म, बाजीगर ने शाहरुख खान को स्टार बना दिया था, बड़ा स्टार। और इस फिल्म का वो गाना, ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, कुमार सानू की आवाज।

रानी मलिक के लिखे हुए बोल और अन्नू मलिक का म्यूजिक बताने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो अपना सिग्नेचर बीच में खड़ देते हैं। जी मैं मिला तू मिली, मैं मिला तू मिली, ये जो बीच में लाइन आती है अनु मलिक ने खुद गाई है और ये गाना उस साल के सुपरहिट टॉप 10 सॉन्ग्स में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गया था और इस फिल्म के लिए अनु मलिक को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था उस साल। शाहरुख खान को फर्स्ट टाइम बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था इस फिल्म के लिए। तो इस फिल्म से उन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट एक्टर के अवार्ड मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। चले लौटते हैं इस फिल्म के गानों पर। एक गाना और था ना इसका, बताना भी नहीं आता जताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है बताना भी नहीं आता। विनोद राठौड़ ने गाया ये गाना और ये गाना पिक्चराइज था सिद्धार्थ पर। भाई एक हीरो सिद्धार्थ भी थे। शाहरुख खान का एक हमेशा से ट्रैक रिकॉर्ड रहा, आप कभी देख लीजिएगा, वो हमेशा दूसरे हीरो की हीरोइन को लेकर भागते हैं। मतलब सिद्धार्थ की हीरोइन थी काजोल इस फिल्म में, लेकिन हुआ क्या, अपनी हीरोइन शिल्पा शेट्टी को तो उन्होंने मार दिया और सिद्धार्थ भाई साहब की हीरोइन ले भागे। एनीवे मजाक कर रहा हूँ। तो ये फिल्म भी बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई, ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। अब्बास मस्तान के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म। गाने इसके सुपरहिट थे, जैसे कि मैंने बताया दिया कि अनु मलिक को मिला बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड इस साल इसी फिल्म के लिए। इसका एक और गाना जो है ना, जिसका विसल पार्ट बहुत अच्छा है, ए मेरे हम सफर, इस गाने की जो विसल है इसे इश्क मूवी के गाने इश्क हुआ में भी यूज किया गया। और वो गाना कैसे भूल सकते हैं जो शाहरुख खान का स्टाइल स्टेटमेंट था, बाजीगर में बाजीगर। कुमार जानू और अलका याग्निक ने इसे गाया, आरजू लखनवी ने इसे लिखा था और इस गाने में शाहरुख खान ने राउंड शेप के गॉगल्स जो पहने थे ना, ये बड़े हिट हो गए थे उस जमाने में। इतनी सारी बातें मैं आपको याद करवाता हूँ, कुछ यादें तो आपके जहन में भी आ जाती होंगी उस जमाने की। नहीं, इन फिल्मों से जुड़ी बताइएगा हमें हमारे फेसबुक पेज पर आकर, हम इंतजार करेंगे। और फिलहाल सुनिए ये बेहतरीन नगमे रेडियो मधु 24/7 लाइव पर। आप हैं यादों का कारवां में समर के साथ। Stay tuned.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: 40% off, 40% joy Alukas.
4: 40% off? Oh my god, let's go, let's go.
5: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joy Alukas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.

0: 3, 2, 1.
1: और रेस सिर्फ स्पीड की नहीं, दिमाग की भी है।
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
4: हाँ जी जी,
3: आधा kg मसूर दाल,
4: जी जी,
3: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
4: जी जी।
3: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
4: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
3: क्या जी?
4: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
3: वाह जी, क्या बात जी।
4: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
5: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं यादों का कारवां विद समर रेडियो 24/7 लाइव पर। अब एक ऐसी फिल्म की बात करूंगा जिसने सनी देओल और यशराज के बीच टकराव पैदा करवा दिया था। ये फिल्म थी डर। 1993 में ये फिल्म आई, डर, किरण वाली, कौन भूल सकता है इसे। किरण नाम की लड़कियों को स्पेशल अटेंशन मिलने लगी थी इस फिल्म के बाद, और न सिर्फ इस डायलॉग के बाद बल्कि इस गाने के बाद भी। तू है मेरी किरण, ओए होए क्या जादू था इस गाने का, जादू तेरी नजर, ओह कमाल था। उदित नारायण की सॉफ्ट मेलोडियस आवाज में आनंद बख्शी के लिखे हुए बोल और शिव हरी का मेलोडियस बेहतरीन म्यूजिक। वैसे तो ये गाना आपने भी देखा होगा, लेकिन इस गाने में एक खास बात थी। चलते चलते जिस तरह से जूही चावला रुक जाती है और अपने दांतों में उंगली दबाकर मासूम सी शक्ल बनाकर जो एक्सप्रेशंस देती है ना, उस स्टाइल को भैया मुझे लगता है कि उस जमाने की हर लड़की ने कॉपी किया होगा। बहुत कमाल लगती है, लेकिन उनके जैसी, सॉरी गर्ल्स, आई एम सो सॉरी, उनके जैसी शायद ही कोई लगी हो। यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सनी देओल, अनुपम खेर, दिलीप ताहिल, जूही चावला थे। और जैसे कि मैंने बताया था कि सनी देओल और यश जी के बीच में कुछ तकरार हो गई थी, यशराज फिल्म्स के बीच में। वजह यह थी कि सनी देओल चाहते थे कि इसमें एंड में शाहरुख खान जो है उन्हें एक नेगेटिव किरदार के तौर पर पेश किया जाए और उन्हें हीरो से मरवाया जाए। बुराई हारती है, हीरो जीतता है। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि इस फिल्म के बनते बनते शाहरुख खान हीरो हो गए। मतलब डर फिल्म की बात की जाए तो ये याद करना पड़ता है कि शाहरुख खान के अलावा सनी देओल भी उस फिल्म में, वो पूरी तरह से छा गए थे इस फिल्म पर। और ये बात सनी देओल को नागवार गुजरी और उसके बाद उन्होंने कसम खा ली कि वो यशराज के लिए कोई फिल्म नहीं करेंगे। खैर हुआ भी कुछ ऐसा ही, उसके बाद सनी जी ने यशराज के लिए कोई फिल्म अभी तक तो नहीं की है। फिल्म के गानों की बात की जाए तो मैं कह रहा हूं ना कि कमाल के गाने थे। और यशराज जी का एक टिपिकल स्टाइल है अपने गानों को पिक्चराइज करने का। एक तो उनकी हीरोइन जो है वो सफेद कपड़े जरूर पहनेंगी, चांदनी की तरह दिखनी चाहिए उन्हें उनकी हीरोइन। कुछ ऐसा ही इस फिल्म में भी हुआ। जूही चावला ने एक ड्रेस पहनी है, व्हाइट सफेद कलर की शिफॉन की साड़ी। और एक और खास बात होती है यशराज जी की फिल्मों में, होली के गाने। इस फिल्म में भी है होली का एक गाना, अंग से अंग लगाना, बहुत ही कलरफुल गाना जैसे कि हर गाना होता है उनकी फिल्म में। और ये फिल्म रोंगटे खड़े कर देने में कामयाब साबित हुई थी। जब जब शाहरुख खान स्क्रीन पर आते हैं डर लगता है। इस फिल्म में पहले रवीना टंडन को फाइनल किया गया था, लेकिन डेट की प्रॉब्लम्स की वजह से जूही चावला को फाइनल किया गया। वैसे जूही जूही है। इस फिल्म के लिए यश चोपड़ा को बेस्ट डायरेक्टर का नेशनल अवार्ड मिला और अनुपम खेर को बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड मिला था। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म हॉलीवुड की मूवी के फेयर मूव से इंस्पायर्ड थी। इंस्पायर्ड हाँ। चलिए फिलहाल इस फिल्म के कुछ नगमे और इस दौर के कुछ और नगमों के साथ कारवां को आगे बढ़ाते हैं। सुनते रहेगा यादों का कारवां विद समर रेडियो 24/7 लाइव पर।

सपोर्ट जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: यादों का कारवा विद समर, याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने। तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: सिंगापुर का एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं समर को, यह है यादों का कारवा। वेलकम बैक। 1993 की बात कर रहे हैं, ये वो साल था जब मुंबई बम ब्लास्ट हुए थे, कौन भूल सकता है इस साल को। और इसी साल सुभाष घई के निर्देशन और माधुरी दीक्षित, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, राखी, अनुपम खेर, राम्या कृष्णन की बेहतरीन अदाकारी से सजी फिल्म आई खलनायक। बॉक्स ऑफिस के तमाम रिकॉर्ड इसने तोड़ दिए थे। संजय दत्त को भी अरेस्ट कर लिया गया था इसी साल। और एक ये भी बहुत बड़ी वजह थी कि ये फिल्म उस साल की बहुत बड़ी फिल्म साबित हुई। नायक नहीं खलनायक हूं मैं, ऐसा लग रहा था कि संजय दत्त को जैसे पोर्ट्रे किया गया था मीडिया में, वो अपने आप को ऐसा ही बताने की कोशिश कर रहे हैं इस फिल्म में। और ये गाना जिसको गाया विनोद राठौड़ और कविता कृष्णमूर्ति ने, और इस गाने में संजय दत्त ने सूट और काव हैट लगाकर हाथ में स्टिक लेकर जिस तरह से डांस किया, वो इस फिल्म में निभाए गए किरदार से बिल्कुल मैच करता है, खलनायक। इस फिल्म का म्यूजिक था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गाने आनंद बख्शी साहब ने लिखे। ये वो टीम थी जो सुभाष घई के साथ ही काम करती थी, जब तक उन्होंने काम किया फिल्में हिट थी। फिर सुभाष घई ने अपना ट्रैक बदल लिया, दूसरे संगीतकारों को मौका दिया, लेकिन फिल्में भी कितनी चली उसके बाद कहना नहीं चाहूंगा। अच्छा, इस फिल्म का गाना जो था ना चोली के पीछे गया, ये बड़ा विवादास्पद गाना था, बहुत विवाद हुआ साहब इस पर, इसके लिए बहुत कुछ कहा गया, इसको रोकने के लिए इसको बैन करने की मुहिम चली, लेकिन कोर्ट से अप्रूवल लेनी पड़ी इस गाने को रिलीज करने के लिए। लेकिन रेडियो पर ये गाना बहुत साल तक नहीं चला था। वैसे आपको बता दूं कि वो जो है ना गाना रिंग रिंग रिंगा रिंग रिंग रिंगा, वो इसी गाने से इंस्पायर्ड है, स्लम डॉग मिलियनेयर का गाना। और इस गाने को इलारून और अलका याग्निक ने इतनी शिद्दत के साथ गाया कि इन दोनों को ही बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड मिला था, फिल्म फेयर अवार्ड। ये पहली बार ऐसा हुआ कि एक ही गाने के लिए दो फीमेल सिंगर्स को बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड मिला। इस गाने की कोरियोग्राफी की थी सरोज खान ने, और वो भी बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड ले गई। फिलहाल इससे पहले कि यादों का झरोखा और ज्यादा खुल जाए, बहुत सारी यादें आप तक आए, इन नगमों से रूबरू हो लेते हैं, उसके बाद आपकी यादों की भी बात करेंगे। फेसबुक पेज हमारा है, यहाँ पर आकर आप लिखते रहिए अपनी यादें इन फिल्मों से जुड़ी, इन सालों से जुड़ी। मैं आपकी यादों का इंतजार करूंगा। मैं हूँ यादों का कारवां में आपके साथ, नाम है मेरा समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, स्टे कनेक्टेड।

0: 3, 2, 1.
1: और रेस सिर्फ स्पीड की नहीं, दिमाग की भी है।
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: हम है राही प्यार की, चलना अपना काम, और चलते चलते हम एक बार फिर से आपके सामने आ गए हैं। मेरा नाम है समर, रेडियो मजी 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं यादों का कारवां। सिंगापुर, आज हम 1993-94 के सालों की बात कर रहे हैं, उन सालों में रिलीज हुई फिल्मों की बातें कर रहे हैं। तो एक और फिल्म आई थी जिसका जिक्र मैं यहाँ करना चाहूंगा, रोमांटिक कॉमेडी से भरपूर महेश भट्ट के निर्देशन में बनी फिल्म हम है राही प्यार के। ये भी उस साल की हिट फिल्मों में शुमार थी। जूही चावला और आमिर खान इसमें हीरो हीरोइन थे। फिल्म के गाने बड़े हिट थे, खासतौर से उस जमाने में इंडिया की टैक्सियों में, बसेस में, ट्रक्स में, ढाबों पर ये गाने बहुत बजते थे। स्पेशली वो घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है, कुमार सानू और अलका याग्निक ने इसे गाया, समीर ने इसे लिखा और इस गाने ने समीर को नेशनल अवार्ड दिला दिया उस साल। म्यूजिक था नदीम श्रमण का और इस फिल्म के बाकी गाने भी बड़े क्लासी हैं। वो गाना वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो, साल हाँ सरगम ने गाया था और ये गाना भी बहुत हिट हुआ। और अपनी अदाओं से जूही चावला एक अलग ही छाप छोड़ जाती हैं, इसीलिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला उस साल इस फिल्म के लिए। ये मूवी हॉलीवुड मूवी हाउस बोट का रीमेक थी। इस फिल्म में पहले अनिल कपूर को लेने की बात की गई थी लेकिन अनिल कपूर ने मना कर दिया और फिर इसके बाद संजय दत्त को लेने की प्लानिंग हुई लेकिन संजय दत्त के जेल जाने की वजह से वो ये फिल्म नहीं कर पाए और आमिर खान को फाइनल किया गया। वैसे मैं आपको बता दूं कि आमिर खान के पिताजी ताहिर हुसैन साहब इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। फिलहाल इन गानों से उन यादों को ताजा करते हैं जो जुड़ी हुई हैं इन गानों के साथ, जो अपने आप चली आएंगी। क्या बोलते हैं आप, सुनते हैं, आइए यादों का कारवां रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर।

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever-buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: To Shahi Maharani for the special treat.
3: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
4: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
3: Thank you.
5: Thank you.
4: Thank you.
2: Thank you. We love you.
6: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature wet and non-veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
7: Singapore, prepare for impact.
8: 3, 2, 1.
9: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
10: यादों का कारवां पर एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं मैं समर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। आज बात हो रही है 1993 की। चलिए उस फिल्म का जिक्र कर लेते हैं जिसे कल्पना लाजमी ने डायरेक्ट किया था और फिल्म का नाम था रुदाली, दिल हुम हुम करे वाली रुदाली। लता जी ने ये गाना गाया और इसके अलावा भूपेन हजारिका ने भी ये गाना गाया। गुलजार साहब ने ऐसे शब्द लिखे हैं कि वाकई ऐसा लगता है कि दिल की आवाज शब्दों में विरोधी, दिल हुम हुम करे घबराए, ऐसे करता है दिल जब घबरा जाता। नहीं, भूपेन हजारिका का म्यूजिक था और ये फिल्म कमाल की फिल्म थी, क्लासिकल सॉन्ग्स थे इसके। ये जो गाना है दिल हुम हुम करे, ये राग भोपाली पर आधारित था। फिल्म में थी रुदाली, डिंपल कपाड़िया, उनके अलावा राखी थी जो रुदाली बनी थी वो भी, अमजद खान, राज बब्बर, मीता वशिष्ठ जैसे कलाकारों ने इस फिल्म को बेहतरीन बना दिया। इस फिल्म के लिए डिंपल कपाड़िया को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला, मिलना लाजमी था। इस फिल्म की कहानी लिखी थी महाश्वेता देवी ने, कौन नहीं जानता महाश्वेता देवी को, मशहूर मारूफ बंगाली फिक्शन राइटर, सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी के जो नोटेबल लिटरेरी वर्क्स हैं उनमें 1084 की माँ है, रुदाली है, अरण्येर अधिकार है। तो जब ऐसी कलम से ये कहानी निकली तो सीधे दिल में उतर गई। फिल्म बेहद कमाल की है और सनी चरी यानी डिंपल कपाड़िया, भाई वो याद रह जाती हैं। देखिए, मुझे आज भी उनके कैरेक्टर का नाम याद है, सनी चरी। वो सनी चरी जिसके पति की मृत्यु पर भी वो एक आंसू नहीं गिराती, वो रुदाली बन जाती है जब भीखनी से मिलती है, राखी से मिलती है। कमाल की कहानी जो दिल को छू जाती है। तो चलिए फिलहाल इस फिल्म का दिल हुम हुम करे सुन लें और उस जमाने के कुछ और गाने और इस कारवां को आगे बढ़ें। सुनते रहिए यादों का कारवां समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर।

0: 40% off. 40% joy alukas.
1: 40% off. Oh my god. Let's go.
2: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joy Alukas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
3: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
4: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
1: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
5: Good morning!
4: वेलकम बैक। 1993 और 94 की फिल्मों के दौर से गुजर रहा है आज यादों का कारवां। 94 में एक फिल्म आई थी जिसका जिक्र किए बगैर मेरी बातें अधूरी रह जाएंगी और वो फिल्म थी 1942 अ लव स्टोरी। जी हाँ, ये वही फिल्म थी जिसमें था एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, और अब तो इस टाइटल से एक फिल्म आ रही है जिसमें अनिल कपूर ही है। क्या खूबसूरत मिसालें दी हैं जावेद अख्तर साहब ने। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, वैसा लगा और कितना कुछ लगा, बहुत कुछ लगा। इनमें से अगर 10 चीजें भी आपको याद रह जाए ना कि ऐसा लगा, ऐसा लगा, ऐसा लगा, ऐसा लगा, तो भैया समझ लीजिए कि आप अपनी फ्रेंडशिप में और ज्यादा पक्के हो जाएंगे। समझ रहे कौन सी वाली फ्रेंडशिप की बात कर रहा हूँ मैं। कुमार सानू ने इस गाने को अपनी आवाज दी और कमाल का रोमांटिक म्यूजिक जो था उसे कंपोज किया पंचमदा ने। पंचमदा अपने पैपी म्यूजिक के लिए बड़े मशहूर थे, लेकिन इस वक्त तक आते आते उन्होंने फिल्मों में म्यूजिक देना ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया था। पंचमदा को अप्रोच किया विधु विनोद चोपड़ा ने और ये कहा कि मुझे आपका जो रेगुलर म्यूजिक है ना, रूटीन वाला म्यूजिक, वैसा म्यूजिक नहीं चाहिए, कुछ अलग करना मेरी फिल्म के लिए, कुछ बेहतरीन। अब ये तो प्रेशर आ गया पंचमदा के ऊपर। हालांकि उन्होंने कुछ गाने कंपोज किए हुए थे, लेकिन जब विधु विनोद चोपड़ा ने उन्हें अपनी फरमाइश बताई तो पंचम घर लौट आया और उसके बाद पूरी रात इस गाने की धुन वो बनाते रहे और तब जाकर ये खूबसूरत धुन निकली, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। सारे गाने उन्होंने एक अलग फ्लेवर में दे दिए थे इस फिल्म के, जिसमें से मुझे वो गाना बहुत पसंद है, कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो। और शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा कि उस दौर में संजय लीला भंसाली विधु विनोद चोपड़ा को असिस्ट किया करते थे, और ये जो गाना है ना कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो, इस गाने का डायरेक्शन संजय लीला भंसाली ने ही किया है। कभी मौका मिले तो देखिएगा क्या खूबसूरती से उन्होंने इस गाने को पिक्चराइज किया है। और जहां तक इस गाने का सवाल है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, इस गाने के लिए उस साल का बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड फिल्मफेयर अवार्ड मिला था कुमार सानू को, और जावेद अख्तर को मिला था बेस्ट लिरिसिस्ट का फिल्मफेयर अवार्ड। सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म साबित हुई थी ये। और इसी फिल्म का एक और गाना था प्यार हुआ चुपके से, इस गाने के लिए कविता कृष्णमूर्ति को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था। अच्छा, एक और मजेदार बात, ये जो गाना है ना एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, ये गाना माधुरी दीक्षित को ध्यान में रखकर लिखा गया था, क्योंकि पहले वही इस फिल्म की हीरोइन होने वाली थी, लेकिन उनकी डेट्स की प्रॉब्लम की वजह से उनसे ये फिल्म छिन गई और आई ये मनीषा कोइराला के खाते में, और वो तो सुपर डुपर हिट हो गई इस फिल्म के बाद। इसे कहते हैं किस्मत, लक, नसीब। मनीषा की किस्मत में था, उन्हें मिला। तो चलिए एक काम करते हैं, इस फिल्म के कुछ बेहतरीन नगमे कुछ तो सुनी लेते हैं, क्या कहते हैं आप? अच्छा, आप ये भी मुझे बताइएगा कि आपने जब ये फिल्म देखी थी तो उस वक्त कैसा माहौल था, ये फिल्म आपने कैसे देखी, मैटनी शो देखा था या लेट नाइट वाला, कौन सा शो था, कैसी ये फिल्म लगी थी, सब कुछ हमें बताइएगा। यादों के झरोखों से जो भी यादें आपके पास आ रही हैं, यादों के कारवां में हमसे शेयर कीजिएगा हमारे फेसबुक पेज पर आकर। सुनते रहिए रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव।

सिंगापुर जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: यादों का कारवा विद समर, याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने। तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: वेलकम बैक, मेरा नाम है समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूँ। और अगली फिल्म का जिक्र करने वाला हूँ मैं, जो 1994 में रिलीज हुई थी। नाम था उसका हम आपके हैं कौन। ये फिल्म नहीं बल्कि एक वीडियो कैसेट लगती है किसी शादी का, नहीं और आप ही नहीं बल्कि जितने लोग ये फिल्म देखते थे उस वक्त सिनेमा हॉल में, वो पूरी फिल्म में मुस्कुराते ही रहते थे। और इस फिल्म को देखने के बाद जब वो सिनेमा हॉल से बाहर निकलते थे तो बड़ा लाइट फील करते थे और अपनी अपनी शादियों के किस्से शेयर किया करते थे एक दूसरे से। ये फिल्म राजश्री के बैनर तले बनी थी और जैसी की वो फिल्में बनाते हैं फैमिली ड्रामा, उसी कड़ी की एक और सुपर डुपर हिट फिल्म थी। बेहद सक्सेसफुल हुई ये फिल्म और इसको डायरेक्ट किया था पहली बार सूरज बड़जात्या ने। ये उनके डायरेक्शन में बनी पहली हिंदी फिल्म थी। और जब मैं ये कहता हूँ कि किसी शादी के कैसेट जैसी लगती है ये फिल्म, तो फिर कैसे इंडियन सोसाइटी में कोई भी शादी इसके बगैर, इसके गानों के बगैर पूरी होती? जी हाँ, कुछ ऐसा ही आलम था उस जमाने में। आज भी इसके गाने तब भी हिट थे और आज भी। राम लक्ष्मण का म्यूजिक था और बोल थे देव कोहली के। सलमान खान, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर, रीमा लागू, आलोक नाथ, रेणुका शाहने और मोनीश बहल के अभिनय से सजी ये जबरदस्त फिल्म थी। वैसे मैं आपको बता दूं कि राजश्री बैनर के तले ही 1982 में फिल्म बनी थी नदिया के पार, उसी का ये अपग्रेडेड वर्जन था। वो गांव की कहानी थी, ये शहर की कहानी कर दी गई। उसे डायरेक्ट किया था गोविंद मुनीस ने और रविंद्र जैन साहब थे उसके म्यूजिक डायरेक्टर। और कमाल की बात ये थी कि 1982 में पहले दिन, उस साल के पहले दिन ये फिल्म रिलीज हुई थी 1 जनवरी को। और ये जैसा कि मैंने कहा कि उसका ऑलमोस्ट रीमेक थी, या यूं कहूं कि रीपैकेज्ड थी, लेकिन ये फिल्म भी जबरदस्त हिट साबित हुई। दीदी तेरा देवर दीवाना कैसे भूल सकते हैं आप, हा? या माए नी माए, ओए होए क्या गाना ये, या वो मुझसे जुदा होकर, ओहो कमाल कमाल कमाल, एक एक गाना। तो जब फिल्म इतनी हिट हो गई जिसके चर्चे गली गली हर घर में होने लगे, तो इसके लिए सूरज बड़जात्या को बेस्ट डायरेक्टर का नेशनल अवार्ड तो मिलना ही था, मिला भी। माधुरी दीक्षित को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। तो इस फिल्म से, ये गाने और उसके बाद इस सफर को हम और आगे ले चलेंगे अपने अंतिम पड़ाव की ओर। सुनते रहिए यादों का कारवां समर के साथ।
2: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो एक केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
0: क्या
1: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू जी जी मार्ट ऑनलाइन .com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
0: आपकी नॉलेज आपकी जी।
2: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

वेलकम बैक, मैं हूँ समर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। एक बात कहूँ सिंगापुर, आप चीज हैं बड़ी मस्त मस्त। नहीं नहीं, बुरा मत मानिए, डोंट फील ऑफेंडेड प्लीज। हाँ, मैं तो एक गाना याद कर रहा था, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, और उससे मुझे याद आया उस साल की एक और फिल्म का जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ यादों के कारवां पे। जी हाँ, 1994 में एक फिल्म आई थी मोहरा, और उसमें था ये गाना। राजीव राय साहब के डायरेक्शन में बनी थी फिल्म। सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, रवीना टंडन, परेश रावल, गुलशन ग्रोवर और नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकार थे इस फिल्म में। फिल्म सुपर डुपर हिट रही। एक तो एक्शन कमाल का था इसमें, इतने कमाल के कलाकार थे, और साथ में इसका म्यूजिक वो बहुत बड़ी वजह बना इसको हिट करने में। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त सुपर हिट गाना, कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण की आवाज में विजू शाह के संगीत ने कमाल कर दिया था। जानते हैं कौन है विजू शाह? कल्याण जाने जी को तो जानते होंगे आप। उनमें से जो कल्याण जी है ना, कल्याण जी वीर जी शाह, उनके ये सुपुत्र हैं, और ये इंडिया के पहले ऐसे म्यूजिक कंपोजर्स में से हैं जिन्होंने प्रोग्राम्ड म्यूजिक देना शुरू किया था, मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते थे। इससे पहले जो सारे संगीतकार थे वो इंस्ट्रूमेंट्स को लाइव बजवाया करते थे, लेकिन विजू शाह ये नई टेक्निक लेकर आए इंडस्ट्री में, और ये टेक्निक कामयाब साबित हुई इस फिल्म के साथ। वैसे अगर आपको त्रिदेव फिल्म का वो म्यूजिक और वो पीस याद हो, पाप से धरती फटी अधर्म से आसमान, तो उसमें जो म्यूजिक बजाया है वो भी विजू शाह का ही है, और उस फिल्म का ज्यादातर म्यूजिक उन्होंने क्रिएट किया था, लेकिन क्योंकि कल्याण जी आनंद जी का नाम उस वक्त चला करता था तो उनका ही नाम कंपोजर्स में लिया गया। वेल, फिलहाल हम मोहरा की बात कर लेते हैं। मोहरा में विजू शाह ने हर तरह का संगीत दिया, मतलब इसमें ट्रेडिशनल म्यूजिक भी था और उनका जो खास अंदाज था उस तरह का म्यूजिक भी उन्होंने पेश किया, और हर गाने को बेहद मकबूलियत हासिल हुई, गाने बहुत हिट हो गए। मस्त मस्त गर्ल का खिताब मिल गया था रवीना टंडन को, तो चीज बड़ी है मस्त मस्त की बात। वैसे ये गाना नुसरत फतेह अली खान की कव्वाली दम मस्त कलंदर पर बेस्ड था, लेकिन ये गाना जबरदस्त हिट हुआ इस फिल्म में, और इस गाने ने रिविजिट किया। अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी उसमें मशीन नाम था उसका, अब्बास मस्तान साहब ने डायरेक्ट की थी और उन्होंने ये फिल्म बनाई थी। अब्बास साहब के बेटे ने इस फिल्म में हीरो का काम किया था। कुल मिलाकर जैसे कि मैंने कहा कि इस फिल्म का म्यूजिक जो था वो बहुत बहुत बहुत हिट हुआ था, और इन गानों के साथ बहुत सी यादें आपकी विदादा हो जाएंगी। जब पानी बरसता है तो आज भी ये गाना आता है आपकी जुबान पर, टिप टिप बरसा पानी, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में कमाल का ये गाना। रवीना टंडन बहुत ही लगी है इसमें। ये फिल्म इंडस्ट्री के टॉप 10 सेंशियस सॉन्ग्स में से एक है, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। वैसे ये गाना जो था वो काटे नहीं कटते वाले गाने से इंस्पायर्ड था, ऐसा रवीना टंडन ने कहा था एक बार। अच्छा, इस फिल्म का एक और गाना था जो बहुत ही कमाल का था, जिसे कल्याण जी आनंद जी ने बहुत साल पहले कंपोज किया था। गाना था मुकेश जी की आवाज में, न कजरे की धार न मोतियों के हार, जिसे इस फिल्म के लिए गवाया गया पंकज उधास और साधना सरगम से। तो चलिए, अब इतनी सारी बातें हो गई इस फिल्म की और इसके गानों की, तो कुछ गाने सुन लेते हैं अपन भी, कुछ और यादें ताजा कर लेते हैं। यादों का कारवां में आप इस समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hu.
3: 40% off, 40% joy alukas,
4: 40% off, oh my god, let's go,
5: offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joy Alukas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.

रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, ओ माय डार्लिंग गिव मी अ लुक, गुस्सा तेरा। मतलब ऐसे मत देखिए, मैं आपसे नहीं कह रहा था, मैं तो बस कह रहा था कि प्लीज सुन लीजिए, मैं हूँ समर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। हाँ बस ठीक है, गुस्सा मत कीजिए, हाँ मुस्कुराइए, क्योंकि आप यादों का कारवां सुन रहे हैं और यादें ताजा कर रहे हैं गुजरे जमाने की। 1993 और 94 के सालों से गुजर रहा है आज का हमारा ये कारवां। और ये जो गाना था रुक रुक रुक अरे बाबा रुक, इसी का मैं जिक्र करने वाला हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि इस गाने की जो हीरोइन है ना, वो है तब्बू। तब्बू उस वक्त फिल्मों में आई थी और वो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि उनकी बहन फरहानाज अपनी जगह बना चुकी थी, लेकिन तब्बू को यह माना जा रहा था कि बस काम कर लेती है किसी तरह से। बहुत लंबी चौड़ी हीरोइन थी और उनके साथ हीरो जानते हैं इस फिल्म में कौन था? अजय देवगन साहब, पतले दुबले से। इस गाने में लंबी लंबी टांगों से रोकती हैं वो अजय देवगन को, पहलवान लगती हैं वो। तब्बू जी सॉरी, लेकिन जैसा मुझे लगा मैंने कह दिया। विजयपथ फिल्म का ये गाना था, अलीशा चिनॉय की दिलकश आवाज और अनु मलिक के संगीत से सजा हुआ। श्याम अनुरागी के बोल थे। ये फिल्म बनी थी फारूक सिद्दीकी के डायरेक्शन में। इसमें अजय देवगन के साथ तब्बू, डैनी, गुलशन ग्रोवर, सुरेश ओबेरॉय जैसे कलाकारों ने अपनी अभिनय क्षमता दिखाई थी और ये फिल्म उस वक्त की हिट फिल्मों में शुमार थी। इस फिल्म के बाकी गाने भी बड़े हिट हुए थे। राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई, ओए होए, ये तो भैया दिल चीरे देने वाला गाना है। कुमार सानू और अलका याग्निक उस जमाने में हिट गाने की गारंटी हो गए थे। वो गाना भी तो इसी फिल्म का है, आइए आपका इंतजार था। फैज अनवर ने इस गाने को लिखा और कुमार सानू के साथ साधना सरगम ने इस बार इस गाने को गाया। ये गाना जबरदस्त हिट हुआ, मतलब इस फिल्म के गाने बहुत हिट हुए और इन गानों की वजह से ये फिल्म भी हिट हो गई। तो कुल मिलाकर जी लब्बू लुआब ये है कि अब इस फिल्म के कुछ गाने मैं आपको सुनाऊंगा और आपसे कहूंगा बाय बाय नमस्कार, फिर मिलेंगे। लेकिन जाते जाते इतना ही कहूंगा कि अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल रखिएगा और साथ में अपनी यादें हमसे शेयर करते रहिएगा। यादों को ताजा करने में फिर आऊंगा बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: Drop the needle.

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति में सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

दिल की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

0: की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Fan.
1: हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। 7:00 यहाँ पर हो चुके हैं 5 मिनट। वेलकम वेलकम, जी हाँ, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर सुबह सुबह बिल्कुल ये चहकती हुई आवाज पहुंच चुके हैं। मैं हूँ अंतरा आपके साथ। यहाँ पर शुरू हो चुका है मस्ती का मंत्रा, विच मीन्स इट्स अ ब्यूटिफुल ट्यूजडे मॉर्निंग। ऑफकोर्स आप और मैं जब मिलते हैं तो माहौल और मॉर्निंग कोई भी टाइम ब्यूटिफुल हो ही जाता है, पर उसी के साथ साथ जो है, कभी आपने ये चीज ट्राई की है, इफ यू आर इनटू रीडिंग बुक्स एंड ऑल, ठीक है, तो हर किसी के पास एक वो बुक रहती है जिसमें यू हैव काइंड ऑफ फ्यू थॉट्स। एंड अक्सर मैंने देखा है लोगों को, इनफैक्ट इन मूवीज आई हैव सीन, यू नो, पीपल विल गो अप टू दैट बुक एंड ओपन रैंडमली कहीं से भी पूरा वो किताब खोलते हैं एंड उस पेज पे जो उनको पढ़ने को मिलता है, दे विल बी लाइक, मे बी दिस इज द थॉट फॉर द डे एंड मे बी दिस इज समथिंग आई शुड कीप इन माइंड फॉर द डे। तो मैंने भी आज वो चीज ट्राई की। सो देयर इज दिस बुक, यू नो, इट्स ऑलवेज विद मी, इट्स लव फॉर इम्परफेक्ट थिंग्स। मैंने जब अचानक से कोई भी ऐसा रैंडम पेज खोला तो उसमें सामने द थॉट वाज समबडी कॉल्ड जिडू कृष्णमूर्ति और उसमें लिखा हुआ है, ट्रू फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम द नोन। कभी कभी मेरे साथ भी होता है कि एक बार में मुझे बात समझ में नहीं आती है, बट देन आई काइंड ऑफ गिव इट अ थॉट एंड मे बी आई ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। बट या अगर आप इस तरह की किसी चीज में विश्वास रखते हो कि जिस चीज के साथ, जिस थॉट के साथ आपका दिन शुरू होता है, आपका दिन एक्चुअली में उसी तरह का जाता है, तो वेलकम मेरे दोस्त। क्योंकि मुझे ऐसे डेफिनेटली लगता है, इट जस्ट गिव्स यू, आई एम राइट नाउ एक्सट्रीमली क्यूरियस एंड माई माइंड इज गोइंग टूवर्ड्स की इसके कई सारे इंटरप्रिटेशन एक्चुअली हो सकते हैं। एनीवेज, ये तो थी मेरी बात। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सफर एंड लेट्स हैव अ रियली रियली गुड म्यूजिकल मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सपना आंटी, ये देखो यहाँ पर धीरे धीरे सब यहाँ पे जुड़ते हुए जा रहे हैं। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग।

0: Are you ready? Are you ready?
1: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
3: हाँ जी जी,
2: आधा kg मसूर दाल,
3: जी जी,
2: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
3: जी जी,
2: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
3: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
2: क्या
3: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप।
2: वाह जी, क्या बात जी,
3: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
4: सुबह की डोज ऑफ फन एंड फैक्ट्स, मस्ती का मंत्र विद आरजे अंतरा।
2: कसम से है ना सलमा, कसम से मजा आ रहा है जब भी ऐसे गाने चलते हैं। आई थिंक हम सभी को काफी मजा ही आ जाता है। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर ट्रैप के साथ, गुड मॉर्निंग। 7:00 हो चुके हैं, 19 मिनट, यहाँ पर मस्ती का मंत्र चल रहा है अंतरा के साथ। या गाने, इट्स जस्ट गॉट लॉट ऑफ मैजिकल पावर, एटलीस्ट फॉर मी। ऐसा इंस्टेंट मूड बदलता है। इनफैक्ट पता नहीं है, बात करते करते याद आ गया, दिस हिलेरियस सॉन्ग, ओके, एंड इट हैज गॉट सच एन एडिक्टिव ट्यून। ये कभी कभी होता है कि बड़े वियर्ड गाने एडिक्टिव ट्यून के साथ बन जाते हैं, एंड देन इट काइंड ऑफ स्टेज विद यू, एंड यही हुआ है मेरे साथ। एंड द सॉन्ग इज बोटी आ रही। आई नो इट्स नॉट मस्ती मैडनेस, बट दिस सॉन्ग इज एवरीवेयर एंड it just gets on to you, and then you are like, what? Why am I in random jagah pe baithe hue, suddenly aap ye gana gunguna rahe ho, and then you are amazed at yourself ki hello, excuse me, why on earth are you singing something like that? Kisne isko ijazat di ki ye mere zuban pe chad jaye? But it is what it is. Well, एक्चुअली तो मैं यहाँ पे कुछ खबर देने वाली थी, बट देन ये चीज याद आ गई। आपके लिए आपके साथ होता है कि कोई गाना, बहुत ही वियर्ड गाना, और अचानक से किसी दिन आप यू स्टार्ट हमिंग, एंड देन वो पूरा दिन आप वो गाना गुनगुनाते रहते हो। हुआ कभी आपके साथ? या फिर आज ही अगर हुआ हो तो जरूर बताएं। हाल फिलहाल में कोई ऐसा वियर्ड गाना आपको बताएं, एंड इट समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि आपके सबकॉन्शियस में से वो गाना उड़ के आता है सामने, एंड आप अपने आप पे यकीन नहीं कर पाते हो कि ये गाना मुझे याद भी था विद लिरिक्स, वो भी करेक्ट। हाउ कम इट्स पॉसिबल? इट इज लाइक दैट। अगर आपने ये नया गाना जो मैंने आज मेरे जबान पर चढ़ा हुआ है नहीं सुना है, तो मुझे जरूर बताएं 9151-8963 पर। मैं आपके साथ वो गाना बिल्कुल शेयर करूंगी, और फिर आप भी ऐसे रैंडम जगह पे बैठ के अचानक से गाओगे ना ना ना ना ना बढ़िया रही सुबह सुबह, हे भगवान। चलो चलो गाना सुनते हैं, वापस आते हैं।

0: बाजू
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: बेहद खूबसूरत गाना जस्ट लाइक यू एंड मी। गुड मॉर्निंग रेडियो मस्सी 24/7 लाइव पर। जी हाँ, टाइम हो चुका है इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट जानने का। 7:33 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में। इस वक्त आपको मिलेगा एक ऑब्स्टिकल होने वाई ई टूवर्ड्स टूअर्स एट क्लेमेंटी एवेन्यू 6 एंट्रेंस। व्हीकल ब्रेकडाउन मिलेगा ऑन SLE टूवर्ड्स BKE आफ्टर TPE, और एक एक्सीडेंट की खबर है ऑन PIE टूवर्ड्स चांगी आफ्टर KPE। अवॉइड करें लेन नंबर 3। वेल, ये रहा इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट। कमिंग बैक विद हमारा जो है यहाँ का अपडेट है ऑफ कोर्स ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
3: यू आर ट्यून्ड इनटू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, कीपिंग यू कनेक्टेड एनीवेयर एनीटाइम द देसी वे।

0: 40% off. 40% joy alukas.
1: 40% off. Oh my god. Let's go. Let's go.
2: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joya Lucas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joya Lucas, the world's favorite jeweler.
3: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
4: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं।
5: द आर जे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
6: Namaste, bhaiyon aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: Your weekly mood lift mantra, only with RJ Antra.
1: Anjali, are you up for a challenge? Because a lot of people definitely are. Radio Masti 24/7 live on Trap ke saath. Yahan pe chal rahe Masti ka Mansrand. It's just bas kuch hi din hue hain jahan pe humne baat karni shuru ki about what we are going to get you right on your screen. Keh sakte hain, bilkul. It's about the Lion City Challenge, a game show of its kind. The smartest mind is gonna win. Aapka IQ, aapki knowledge and everything. Yes, it is going to be put on test. Aur jab humne kaha to hamara jo response hai wo kafi interesting raha. Bhai, kafi sare log already registered kar चुके हैं एंड अगर आपने अभी तक इस बारे में नहीं सुना है या आप उसके बारे में सोच रहे हैं कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि ट्राई तो डेफिनेटली करना चाहिए. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट लायन सिटी चैलेंज, सिंगापुर का स्मार्टेस्ट गेम शो वेयर नॉलेज विंस. तो आपको अगर लगता है कि यू नो यू हैव बीन गुड इन जीके एंड ऑल, आपकी नॉलेज काफी अप टू डेट है, यू नो अबाउट स्पोर्ट्स, मे बी एंटरटेनमेंट वाले साइड में आपका जो है हाथ काफी स्ट्रांग है एंड मे बी यू आर ऑलवेज द वन आंसरिंग क्वेश्चंस बिफोर एवरीवन एल्स, यू नो मैं वैसा वाला नहीं. सो वेल, अगर आपको लगता है दैट यू हैव व्हाट इट टेक्स टू कम्पीट इन अ गेम शो लाइक नेवर बिफोर, बिकॉज वी आर रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, हम कोई चीज इतने एवे ही नहीं कर देते हैं. वी ऑलवेज इट्स extremely extremely special and unique in its own way. So well, is baar hum aapki knowledge ko bas test karna chahte hain with of course exciting prizes and winnings jo ki honge up for a grab. Participate karne ke liye simply text us lion yani ki sher LION to 9151896 3. aap jab hame text bhejoge to hamari team jo hai aapko jo first स्टेज है उसके दो सवाल भेजेगी. वो जवाब जब आप हमें दोगे तो आप मूव सही जवाब देना पड़ेगा ऑफकोर्स, फिर आप मूव करोगे स्टेज टू पे, नेक्स्ट फेज पे, जिसपे ऑफकोर्स द टीम विल कीप गाइडिंग यू व्हाट टू डू नेक्स्ट. सो वेल, मैं कहती हूँ कि इस मौके को हाथ से बिल्कुल नहीं निकलने देना चाहिए एंड आज के आज ही रजिस्टर कर लेना चाहिए. LION, जस्ट टेक्स्ट अस टू पार्टिसिपेट 9151896 3 पर.
2: 3, 2, 1.
3: और रेस सिर्फ स्पीड की नहीं, दिमाग की भी है.
4: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151896 3.

0: to Shahi Maharani for the special treat.
1: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
2: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
1: Thank you.
3: Thank you.
2: Thank you.
0: Thank you. We love you.
4: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Wet and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply. Aapki knowledge, aapki jeet.
5: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
6: Har Tuesday, ek naya twist. Masti ka mantra with RJ Antra.
7: दोस्त, जब किस्मत और मेहनत दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं ना, तो फिर बात कुछ अलग ही हो जाती है। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, मैं हूं अंतरा आपके साथ। ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग, मस्ती का मंत्रा चल रहा है एंड ये घंटा होने वाला है खत्म। लेकिन एक टीजर छोड़ के जाना चाहती हूँ, एक क्लास 10th का ड्रॉप आउट, ठीक है। बट आज की डेट में जो है IIM में, जी हाँ, वन ऑफ द इंस्टीट्यूट्स जहां पर 90+ percentile वाले स्टूडेंट्स, टॉप एलीट स्टूडेंट्स जाने के लिए एग्जाम्स देते हैं, वहां पे अब इस बंदे को एज अ टॉपिक पढ़ा जाने वाला है। कौन है ये बंदा एंड क्यों इसको पढ़ा जाने वाला है, लेट मी टॉक अबाउट इट मोर अगले घंटे में जब हम मिलेंगे ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। गुड मॉर्निंग।

कहते हैं शादी करने का कोई सही वक्त नहीं होता, जब कर लो बस तभी से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है। अदिति मेरे शेर मेरे चीते, तुझे कुछ साल अकेला क्या छोड़ा, तूने इतना बड़ा झोल कर दिया। बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते।